ताइबंबु शेंबीबा इबुंगो नंबु कैरा लैबनो ताकपियु तोलबा ननाइदा ताइबंबु शेंबीरबा लाइनिंग थौ।

0: ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯥꯏꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯂꯧꯈꯠꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯔꯤ꯫ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯥꯡꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯁꯤꯡ ꯀꯩꯗꯧꯅꯨꯡꯗꯁꯨ ꯂꯦꯝꯅ ꯊꯥꯔꯣꯏ, ꯁ꯭ꯔꯤ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯍꯥꯏ꯫
1: ꯃꯦ ꯖꯥꯟꯇꯥ ꯍꯨꯟ ꯀꯤ ꯄꯦꯄꯔ ꯂꯤꯛ ꯑꯦꯛ ꯀꯣꯏ ꯃꯥꯃꯨꯂꯤ ꯕꯤꯁꯌ ꯅꯥꯍꯤ ꯍꯦ, ꯂꯥꯈꯣ ꯕꯤꯗ꯭ꯌꯥꯔꯊꯤ ꯑꯔ ꯎꯟꯀꯦ ꯑꯚꯤꯚꯥꯕꯀꯣ ꯀꯦ ꯂꯤꯌꯦ ꯕꯍꯨꯠ ꯍꯤ ꯄ�ꯤꯗꯥꯗꯥꯌꯛ ꯍꯦ, ꯑꯔ ꯏꯁꯂꯤꯌꯦ ꯄꯦꯄꯔ ꯂꯤꯛ ꯘꯠꯅꯥ ꯁꯦ ꯑꯕ ꯇꯕ ꯄꯤꯛꯂꯦ ꯙꯥꯏ ꯃꯍꯤꯅꯣ ꯃꯦ ꯑꯅꯦꯛ ꯕꯦꯗ ꯀꯗꯝ ꯎꯠꯥꯏ ꯒꯏ, ꯒꯨꯅꯥꯒꯥꯔꯣꯀꯣ ꯄꯀꯔꯥ ꯒꯌꯥ ꯍꯦ, ꯕꯤ ꯖꯦꯜ ꯃꯦ ꯄꯔꯦ ꯍꯦ, ꯍꯃꯥꯔꯥ ꯁꯕꯁꯦ ꯃꯍꯠꯋꯄꯨꯔꯟ ꯖꯤꯝꯃꯥ ꯊꯥ ꯀꯤ ꯕꯤꯗ꯭ꯌꯥꯔꯊꯤꯌꯣ ꯀꯥ ꯑꯦꯛ ꯕꯔꯁ ꯕꯔꯕꯥꯗ ꯅꯥ ꯍꯣ, ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯅꯦ ꯑꯕꯤ ꯀꯝ ꯁꯦ ꯀꯝ ꯁꯃꯌ ꯃꯦ 22 ꯂꯥꯈ ꯖꯤꯠꯅꯦ ꯕꯤꯗ꯭ꯌꯥꯔꯊꯤꯌꯣ ꯀꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯍꯣ ꯖꯥꯏ ꯏꯁꯀꯥ ꯄ꯭ꯔꯕꯟꯙ ꯀꯤꯌꯥ।
0: ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯉꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯟꯗꯜꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯈꯟꯅꯒꯅꯤ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ, ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯗ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯤꯠ ꯄꯦꯄꯔ ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯊꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯗꯥꯕꯤ ꯇꯧꯔꯗꯨꯅ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯁ ꯁꯣꯅꯝ ꯋꯥꯡꯆꯨꯛꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯈꯤꯕ ꯆꯔꯥꯍꯦꯟꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯍꯟꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯑꯦꯟ ꯗꯦꯚꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ DRDO ꯂꯩꯃꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯣꯡꯊꯛꯇ ꯁꯥꯅ ꯀꯥꯞꯄ ꯌꯥꯕ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜ ꯀꯨꯁꯥ ꯉꯔꯥꯡ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯆꯥꯡꯌꯦꯡ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯎꯔꯤꯁꯥꯒꯤ ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔ ꯈꯣꯡꯕꯥꯟꯗ ꯂꯩꯕ APJ ꯑꯕꯗꯨꯜ ꯀꯂꯥꯝ ꯑꯥꯏꯂꯦꯟꯗꯒꯤ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯆꯥꯡꯌꯦꯡ ꯇꯧꯈꯤ꯫ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯉꯥꯛꯁꯦꯜ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯥꯂꯌꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯨꯁꯥ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯁꯤ ꯐꯥꯏꯇꯔ ꯖꯦꯠ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯟꯃꯦꯟ ꯑꯦꯔꯤꯌꯦꯜ ꯚꯦꯍꯤꯀꯜ ꯌꯥꯎꯅ ꯌꯦꯛꯅꯕꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯌꯥꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯀꯌꯥ ꯑꯊꯥꯞꯄ ꯃꯐꯝꯗꯒꯤ ꯀꯥꯞꯄ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯄꯇꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯄꯗꯤ ꯃꯨꯔꯃꯨꯅ ꯔꯣꯃꯥꯅꯤꯌꯥꯒꯤ ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯄꯇꯤ ꯅꯤꯀꯣꯁꯣꯔ ꯗꯥꯟꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯌꯥꯅꯆꯦꯔꯣꯜ ꯀꯌꯥ ꯁꯍꯤ ꯇꯧꯅꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯚꯥꯔꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯣꯃꯥꯅꯤꯌꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯑꯦꯟ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯐꯕ ꯃꯔꯤ ꯊꯝꯅꯕ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯅꯤꯅ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯁꯨꯈꯟꯅꯈꯤ꯫ ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯄꯇꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯄꯗꯤ ꯃꯨꯔꯃꯨ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯍꯨꯝꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯀꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯔꯣꯃꯥꯅꯤꯌꯥꯗ ꯊꯨꯡꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯁꯦꯜ ꯇꯨ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯤꯔꯃꯂꯥ ꯁꯤꯇꯥꯔꯥꯃꯟꯅ ꯉꯁꯤ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯦꯜꯂꯤꯒꯤ ꯕꯤꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯚꯕꯟꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯕ 138 ꯁꯨꯕ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯒꯅꯤ꯫ ꯚꯥꯔꯠꯇ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯆꯠꯅꯕ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ 138 ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯔꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯕꯣꯔꯗ ꯑꯣꯐ ꯗꯤꯔꯦꯛꯠ ꯇꯦꯛꯁꯦꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯜ ꯇꯨ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯥꯂꯌꯒꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯦꯜ ꯀꯌꯥ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯒꯅꯤ꯫ ꯁꯤꯛꯀꯤꯝꯒꯤ ꯅꯥꯝꯆꯤ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯁꯦꯃꯔꯗꯨꯡꯗ NHPC ꯇꯤꯁꯇꯥ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ 6 ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯀꯤ ꯇꯅꯦꯜ ꯂꯤꯡꯈꯥꯏꯕꯗꯒꯤ ꯊꯣꯔꯛꯄ ꯌꯥꯗꯅ ꯂꯩꯔꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 25 ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯅꯨꯃꯤꯠ 4ꯅꯤ ꯆꯨꯞꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤ ꯀꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯗꯨ ꯉꯔꯥꯡ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈꯤ꯫ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯁꯤꯛꯀꯤꯝ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯃꯔꯤꯅ ꯁꯥꯕ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯔꯤ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯗꯨꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯝꯅ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯊꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯈꯪꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ 35ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗ ꯄꯤꯈꯠꯂꯛꯅꯕꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ, ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎꯅ ꯁꯤꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 94 ꯁꯨꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯤꯑꯣꯏ 6,30,000 ꯔꯣꯝ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯆꯥꯎꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤ꯫ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎꯅ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯕꯨ ꯁꯥꯐꯒꯗꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯊꯥꯡꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯤ꯫ ꯃꯦ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯨꯝꯅꯤ ꯃꯔꯤꯅꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯔꯥꯏꯖ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯀꯟꯕ ꯅꯣꯡ ꯆꯨꯈꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥ ꯃꯟ ꯀꯤ ꯕꯥꯠꯀꯤ 156 ꯁꯨꯕ ꯏꯄꯤꯁꯣꯗ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 12:00 ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤꯒꯤ ꯊꯣꯡꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯀꯅꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ AIR ꯅ꯭ꯌꯨꯁ, DD ꯅ꯭ꯌꯨꯁ, PMO ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯦꯟ ꯕ꯭ꯔꯣꯗꯀꯥꯁꯇꯤꯡ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯥꯂꯌꯒꯤ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕ ꯆꯦꯅꯦꯜꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯂꯥꯏꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯃꯤꯡ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯀꯅꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ LRS ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯗꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯁꯟꯗꯣꯛꯀꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕ ꯍꯦꯛ ꯂꯣꯏꯕꯒ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯀꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯃꯛꯀꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 9:00ꯗꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯀꯅꯤ꯫ ꯗꯥꯏꯂꯦꯛ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯗꯅ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯁꯟꯗꯣꯛꯀꯅꯤ꯫ ꯉꯁꯤ ꯐꯣꯡꯕ ꯄꯥꯎꯆꯦꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯪꯁꯥ ꯇꯥꯕꯝ ꯄ꯭ꯔꯦꯃꯥꯅꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯄ꯭ꯔꯦꯃꯥꯅꯟꯗ,
2: ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯅꯣꯂꯤꯅꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯇꯤ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯇꯔꯤ ꯀꯃꯤꯁꯟꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯀꯨꯝꯑꯣꯟ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯔꯥꯖ꯭ꯌꯄꯥꯜꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯖꯟꯇꯔ ꯃꯟꯇꯔꯗ CJPꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯒꯤ ꯊꯧ ꯏꯟꯁꯤꯜꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯒ꯭ꯔꯤꯍ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯒꯣꯕꯤꯟꯗꯥꯁ ꯀꯣꯟꯊꯧꯖꯝꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯕꯤꯅꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯟꯖꯤꯠ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯒꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯣꯡꯕ ꯄꯥꯎꯆꯦꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯣꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯇꯤ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯇꯔꯤ ꯀꯃꯤꯁꯟꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯀꯨꯝꯑꯣꯟ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯍꯟꯕꯗ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯇꯤ ꯐꯪꯍꯟꯕ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯔꯥꯖ꯭ꯌꯄꯥꯜꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯀꯃꯤꯁꯟꯗ ꯄꯥꯡꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯇꯦꯡꯁꯤꯡ ꯄꯥꯡꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯁꯉꯥꯏ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯤ꯫ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯁꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ, ꯁꯉꯥꯏ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯏꯪꯂꯤꯁ, ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯀ꯭ꯔꯣꯅꯤꯀꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯣꯛꯅꯐꯝꯗꯁꯨ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯐꯣꯡꯂꯤ꯫ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯏꯁꯇꯔꯟ ꯐ꯭ꯂꯦꯡꯛ ꯁꯦꯝꯈ꯭ꯔꯦ, ꯑꯥꯔꯝ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯗꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯉꯥꯏ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯗ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯤ꯫ जंतर मंतर सीजेपी चंसीब खोजों राज्य की गृहमंत्री गोविंदास कौथौजम फोदी वाफम सना एक्सप्रेस इंग्लिश अहम हेडलाइन तौर जंतर मंतर मणिपुर कलू लाब नाह ला लमजिंगमी है गोविंदास की वाफम सना लेबाद अनीब हेडलाइन तौर पासी अत पासेस अहम लमाय मरब पाव फोरी पासी हिलसोनबिल एक्सप्रेस अनीब हेडलाइन तौर मणिपुर मेल नेट परीक्षा की वह चेल लीक मरी लेना चंसीब खोजंग मपान की खुद याब की ममी तारी है गृहमंत्री की वाफम अहम हेडलाइन तौर संजित रविना लेखिदब की कुमोन पांथोखे सेक्यूरीटी फोर्स की मखुद चलब कया अफस्पा की मरूम हाथीब लेख्रे सना लेबा की एंकर कलम फोंगे पासी अहम पासेस मरब पाव फोरी पीपल्स क्रॉनिकल ड्रग ललोब की मथक एन सी बी अकनब थबक लौखली है अहब हेडलाइन तौर हुएन लनपाव मोबाइल फोन की खुथांग खद्रक तौर लुपा लिंग हूंपू लौब की स्काम इम्फाल यौरगे साइबर क्राइम पी एस वाकत्खे है पाव अहब हेडलाइन ओरी एन सी बी क्रैकडाउन चथव म्यांमा की ड्रग ललोब उमंग तुरल चलहे है पौनफम अनीब हेडलाइन तौर कंट्री मेल फ्यूचर यंग लीडर बूथ कैंपेन ग्रां तमेंलों हौदब की पाव अहब हेडलाइन तौर तमेंलों टाइम्स एन एस सी एन आई एम एन एस सी एन जी पी आर एन ईस्टर्न फ्लैंग तोान तोब लुप खाइदोखे है पाव अहब हेडलाइन ओरी नोली
0: अरुबद मरुब पाउमापनी चथरप थजत्रा कंगजिंबी थौरोंसी पुनः जत्रा कंगलें पांथोन लोसीगनी प्रधानमंत्री नहासी तुम्हारी मांगन खोटब कईदू लेम थारोई डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन लेमाई नोथक सा काप मिसाइल कुसा माइ पाक चंगे तुख्री पा लुजरी
3: अदम थरम ताबीरी आकाशवाणी इम्फाल हजेमुक ताबीरसी अरामबम तोमबिनौ देवी कांगुदगी खुबागी से

0: തെക്ചം ഗംഭീർ സിംഗ് നഖോംബ ബാഷി താബിരി ആകാശവാണി ഇംഫാൽ ഡൽഹിദഗി റിലേ ലൗദുന സമാചാർ പ്രഭാത് മോർണിംഗ് ന്യൂസ് അമതി സിലോംഗദഗി റിലേ ലൗദുന അവാങ് നോംപുല്ലംഗി പാ മഥം മഥം ഓയ്ന താബ ഫംബിരഗനി
1: सब्जियों के 2000
2: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक की घटनाएं रोकने के लिए नया कानून लाने का वादा किया। आज मंत्रिमंडल की बैठक में कड़े प्रावधान लाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेपर लीक मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में अनशन समाप्त किया। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला अपना पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी, शिक्षा तथा खेल के क्षेत्रों में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का स्कॉटलैंड के ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए।
7: पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक वीर कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया।
6: प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिए गए हैं।
7: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे, विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी, कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
6: वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षाओं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है।
8: दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत में लोक परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक से जुड़े मामलों की जल्द सुनवाई के लिए एक विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय की अधिसूचना के अनुसार यह अदालत लोक परीक्षाएं, अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 और उससे जुड़े अन्य मामलों की सुनवाई करेगी। यह अधिसूचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा में पेपर लीक के मामलों में शामिल लोगों को शीघ्र और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए देशभर में फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद जारी की गई। रोहन, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
6: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों से जारी अनशन समाप्त कर दिया। एक रिपोर्ट।
9: इस दौरान सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद भी वहां पहुंचे और पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। श्री वांगचुक ने कहा कि उन्होंने विभिन्न शर्तों पर लंबी बातचीत के बाद अनशन समाप्त किया है। उन्होंने सभी से किसी भी प्रकार की हिंसा न होने देने के लिए सतर्क रहने का आग्रह किया। श्री वांगचुक 28 जून से शिक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक मामले में जवाबदेही की मांग को लेकर अनशन पर थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे।
6: प्रधानमंत्री मोदी ने श्री वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
10: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
7: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा और खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकुशोर डान के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। एक रिपोर्ट।
2: प्रेस वक्तव्य में राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और रोमानिया के बीच 7 दशकों से ज्यादा से गहरा और मजबूत संबंध रहा है, जो आपसी भरोसे, सम्मान और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों पर टिकी है। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, कृषि उत्पादन, उर्वरक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। बुखारेस्ट रोमानिया से शुभाश्री महापात्रा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बुखारेस्ट के विक्टोरिया पैलेस में रोमानिया के प्रधानमंत्री इली बोलोजान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे रोमानिया के राष्ट्रपति के साथ भारत रोमानिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सचिवों की नियुक्ति की है। वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव होंगे। टीके अनिल कुमार स्कूली शिक्षा और साक्षरता सचिव होंगे। भारत ने 350 किलोग्राम के थ्रस्ट श्रेणी का अपना पहला स्वदेशी डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान GTRE ने विकसित किया है। एक रिपोर्ट।
3: रक्षा मंत्रालय ने कहा कि DRDO के डिजाइन पर आधारित इस जटिल प्रणाली की डिलीवरी भारतीय रक्षा उद्योग की बढ़ती तकनीकी क्षमताओं को दर्शाती है। ये वर्षों की सटीक इंजीनियरिंग, उन्नत विनिर्माण और भारत के वैज्ञानिक और औद्योगिक समुदाय के बीच घनिष्ठ साझेदारी का परिणाम है। मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि जेट इंजन प्रौद्योगिकी को विश्व के सबसे परिष्कृत इंजीनियरिंग विषयों में से एक माना जाता है। इस इंजन को बुधवार को आजाद इंजीनियरिंग द्वारा सफलतापूर्वक विकसित किया गया और GTRI को सौंपा गया। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: DRDO ने आज ओडिशा तट के निकट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली कुशा मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO और संबंधित पक्षों को बधाई दी है। ओडिशा के पवित्र तटीय शहर पुरी में आज विश्व प्रसिद्ध बहुधा यात्रा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की श्री गुंडीचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक की वापसी यात्रा कराई जाएगी।
4: पुरी के पवित्र शहर गहरी भक्ति और आध्यात्मिक उत्साह से भर गया है। लाखों भक्त भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की घर वापसी की बाहुड़ा यात्रा को देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पारंपरिक वाद्य यंत्र की ताल के बीच देवताओं के पहंडी जुलूस से समारोह पूर्वक ले जाया जाएगा और उनके शानदार रथों पर विराजमान किया जाएगा। यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ मौसीमा मंदिर में रुकेगा, जहाँ भगवान को पोड़ो पीठा का भोग लगाया जाएगा। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। इस बीच गुजरात में पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ स्कॉटलैंड के ग्लासगो में एक भव्य और रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हुआ। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग ले रही हैं। ध्वजवाहक मीराबाई चानू और औपचारिक मशालवाहक लवलीना बोरगोहेन के नेतृत्व में भारतीय दल ने तिरंगे लहराते हुए स्पोर्ट्स एरेना में प्रवेश किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद विशाल। पेपर लीक की गंभीर समस्या से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा आज के अधिकांश अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री के शब्दों को दिया है पेपर लीक पर कड़ा कानून बनेगा, आज कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा मसौदा। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनशन समाप्त करने को भी अखबारों ने सुर्खी बनाया है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है वांगचुक ने आधी रात तोड़ा अनशन, केंद्रीय मंत्रियों ने जूस पिलाकर तोड़वाया अनशन। वहीं आंदोलनकारी छात्रों और सरकार के बीच बातचीत पर नवभारत टाइम्स का कहना है वेन्यू पर अटकी सरकार से वार्ता। अमर उजाला की सुर्खी है यूपीएससी की तरह एनटीए परीक्षाएं होंगी फुल प्रूफ, शुरू हुए बड़े बदलाव, गड़बड़ी पर नपेंगे अधिकारी, ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम की भी होगी समीक्षा। परीक्षा सुधार जरूरी शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ छात्रों का आंदोलन अपनी जगह है, लेकिन परीक्षा सुधार के लिए जो कदम उठाए गए हैं उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा को साकार करने की जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ परीक्षा तंत्र से जुड़े लोगों की भी होनी चाहिए। 2 साल के अंतर की शर्त लगाकर नहीं रोक सकते मातृत्व अवकाश, सरकारी कर्मियों के मातृत्व

0: आप पंथाओ अपोक्पा नमोम लाई भक्ति विधि पंथाओ की माई गई है नमोम वा अनक खांग ली है नमोम दी नरांग इनुंग देगी तरासी नम दरी है पंथाओ
1: हीस यवा मी कप नबसु मसाई ने करी की तरासी नम बा हा करी की तरासी नम बा हाय चिंता सिलमा मत सु थोकबांग निंग दबी तरा साकु थोंगले मका हल नंग बु पोपी पलेम नमा असी बिदुना असुम नबु सिंता लमरन हे
0: बले
1: थक्सी खासी नाय दबी मांग सोक थमे नाय न वारक वातेम लक्तबी सिगा
0: बले मि मातो
1: आ इमो मि बे मना हे थोय सिंग थोय बसीदी माय थोंग खे गुमला आवा पोलम पु बदे द मंगाय रे ने यंजनिंग ग्रे चिंग लोंग न सको
2: पले मि मा पोपी इसेम हल्द अदुन चैबीगनो इसेम हल्ग तरा चिंदा मिन जगेने इसेम हल से तरा लाम रिनी अपोपी
1: हे परी न वा पिक अप आंगांग न टिक न त पलेम न मा वई बी थक त हंग न या वा पाउ त पदि न सेम छक पि बे म नोंसी द न नोंसी साबी सिन इन छिल्ली ब न तर हे कना घी सेम हल हा कना घी सेम हल नो हे परी करी मी एन छंग खै दु न लेडी लव मोंग बे इरा नोंग द खोंग दो यु खोंग दो यु पलेम न मा ऐगे या वा तुहिं ग द बनि परी परी न दम इरा नोंग द तरा छिं दम लो ला तरा छिं दम लो लाउ ने लाउ ने परी न
0: जे मा जे परी इसे हम गे दो निंग थो
1: हाय हाय लंग के पि ता ब्रा खोंग दो निंग ब मा फम द खोंग दो खो ले निंग ब मा फम द ले जेरो म सि को रो नोंग द कि इरा नोंग द ले ब या रे रो ए थोंग कि ना तै थिंग ल गे खम ब्रा
0: पलेम पहले मपोपी करी मताओ को बगे नमो मुक करी ओए रसीगे पहले थोंगी ना ते कंग बियो सारगी पोरों सत बियो पहले मी मातों अपंग भी नमो मनी नमो मुलत नबी गनु थोंगी ना ते कंग बियो गब पहले तेरे सिंजातान की बाप पंथाओ माना हलाई रखती भावा नमोम इरानुंग दलाई जगे पले

नंगे थमोइले कोलुंदा नाइतुम सदबी लेरांग उइजगे थाजुकोरो मानसु साखी उइशनु नंगी नुंग सिबपु लेखा ताहलोय नंगबु पुनसिगे थादोलोय।

ताबिरिबासी आकाशवाणी इम्फालगी कंगला च्यानलगी थौरमनी हौजिक ताबिरसी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT ने स्पोंसर तौब थौरम उमंग

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश, आप सबका स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: और मैं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जीवन के दुख हमें सुधरने और आगे बढ़ने का अवसर देते हैं, जबकि जीवन में लगातार सुख कभी कभी हमारे आत्म विकास में बाधा बन सकता है।
3: आपने बहुत सुंदर विचार भेजा, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: पुराना तालाब डुमराव से वली उल्लाह अंसारी जी,
3: शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर,
2: भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा,
3: और गाँव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, मीठी गुर्जर, अनाया गुर्जर, ओजस गुर्जर, अवनी गुर्जर और बेटी प्रियांशी।
2: अयोध्या धाम से राजबाबू शर्मा, रामबाबू शर्मा, राजबाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
3: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीना पांडे और विनय शंकर पांडे के साथ साथ नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: धन्यवाद आप सबको और स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में।
3: श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे दक्षिण भारत के एक अनूठे उत्सव की।
2: अब तक हमने असम, नागालैंड और झारखंड के उत्सवों की चर्चा की, आज रुख करते हैं दक्षिण भारत की ओर, जहां का अनूठा उत्सव है कैल पोध। ये उत्सव कर्नाटक राज्य के कुर्ग क्षेत्र में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है।
3: तो श्रोताओं, आपको बता दें कि कुर्ग भारत के सबसे सुंदर और रमणीय स्थानों में से एक है। यहाँ की हरी भरी वादियाँ और पर्वतीय प्राकृतिक सुंदरता सबका मन मोह लेती है
2: जी।
3: यहाँ के खूबसूरत कॉफी के बाग दुनिया भर में जाने जाते हैं, इसीलिए कुर्ग को कर्नाटक का स्कॉटलैंड कहा जाता है।
2: इसी कुरुक्षेत्र में रहती है कोडावा जनजाति। कोडावा लोग प्राचीन भारत में योद्धा समुदाय माने जाते थे और इनकी वीरता की गाथाएं वहां की लोक कथाओं में भी मिलती हैं।
4: भारतीय सेना में भी इनका योगदान बहुत अहम रहा है।
2: तो हम बात कर रहे थे कैल पोध उत्सव की। सबसे पहले जानते हैं कि कैल पोध का क्या अर्थ है।
3: श्रोताओं, कैल का मतलब है हथियार या उपकरण और पोध का मतलब है उत्सव, यानी हथियारों और उपकरणों का उत्सव। यह हर साल 3 सितंबर को मनाया जाता है। तब तक धान की रोपाई हो चुकी होती है।
2: उस दिन कड़ावा जनजाति के लोग अपने घर से हथियार और कृषि के उपकरण निकालते हैं, उन्हें फूलों से सजाते हैं। फूलों में खासकर फ्लेम लिली फूल का इस्तेमाल किया जाता है, जो वहाँ प्रचुरता से पाया जाता है। अब थोड़ी सी जानकारी फ्लेम लिली फूल के बारे में।
3: श्रोताओं, ये भारत, अफ्रीका और एशिया के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला अत्यंत आकर्षक और दुर्लभ फूल है
2: जी।
3: इसकी पंखुड़ियां तेज लाल और पीले रंग की होती हैं, जो आग की लपट की तरह दिखाई देती हैं। इसी कारण इस फूल का नाम फ्लेम लिली पड़ा
2: जी।
3: कुर्ग की वादियों में जब ये फूल खिलते हैं तो बहुत ही मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करते हैं। ये फूल तमिलनाडु का राजकीय फूल भी माना जाता है।
2: उत्सव के दिन मवेशियों को भी नहला धुलाकर फूलों से सजाया जाता है और उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया जाता है, क्योंकि वे खेती बाड़ी के कार्य में सबसे बड़े मददगार हैं।
3: बता दें श्रोताओं कि हथियारों की पूजा से संकेत हिंसा का नहीं है, लेकिन सुरक्षा का है
2: जी।
3: वे हथियारों के प्रति आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में किसी भी आक्रमण के समय उनके कारण ही, यानी हथियारों के कारण ही सुरक्षा सुनिश्चित हो सकी थी
2: जी।
3: साथ ही साथ पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण पुराने समय में उन्हें अपने परिवार, पशुओं और गांव की रक्षा खुद करनी होती थी। इसी कारण हथियार उनकी सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक बन गए।
2: कैल पौध उत्सव में कृषि उपकरणों का भी सम्मान किया जाता है, क्योंकि वे भी खेती बाड़ी का प्रमुख माध्यम हैं। पूजा के बाद कुरुक्षेत्र में जगह जगह पर समारोह होते हैं। जगह जगह पर विशेष साज सज्जा के साथ मेले लगते हैं। कोडावा समुदाय की वीरता की कथाओं की झांकी प्रस्तुत की जाती है।
3: श्रोताओं, कोडावा संस्कृति से संबंधित चित्रकला और नृत्यों का भी सामूहिक प्रदर्शन होता है। उस दिन कोडावा पुरुष अपनी पारंपरिक पोशाक पहनते हैं, जिन्हें चक्कली कहा जाता है।
2: कैलपोध उत्सव के दिन पारंपरिक व्यंजनों की भी भरमार रहती है। चावल की बनी कंडबट्टू विशेष लोकप्रिय है। इस दिन लोग एक दूसरे को फूलों की भेंट देकर सम्मानित करते हैं।
3: श्रोताओं, कैलपोध उत्सव कोडावा जनजाति की योद्धा संस्कृति, कृषि जीवन और गौरवशाली परंपराओं की याद दिलाता है।
2: ये भारत के दुर्लभ उत्सवों में से एक है, जहां हथियारों की पूजा हिंसा के लिए नहीं बल्कि सामाजिक कर्तव्य, सुरक्षा और आत्मसम्मान के प्रतीक के रूप में की जाती है।
3: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, कैलपोध उत्सव कहाँ और किन के द्वारा मनाया जाता है और कैलपोध शब्द का क्या अर्थ है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: कैलपोध उत्सव कहाँ और किन के द्वारा मनाया जाता है और कैलपोध शब्द का क्या अर्थ है?
3: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने उत्तर व संदेश भेज सकते हैं।
2: फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
3: तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है दो मेंढकों की यात्रा।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित एक जापानी मनोरंजक हास्य लोक कथा पर आधारित है, जिसमें दो मेंढकों की मजेदार यात्रा का वर्णन किया गया है।
3: दो मेंढकों की यात्रा।
5: नमस्कार साथियों, आज हम आपसे साझा करने जा रहे हैं एक मजेदार जापानी लोक कथा। कुछ समय पहले की बात है, जापान में दो मेंढक रहते थे। एक मेंढक ओसाका नगर के पास एक छोटे से खड्ड में रहता था और एक क्योटो नगर के बाहर एक छोटे से तालाब में निवास करता था। एक दिन ओसाका नगर के मेंढक के मन में एक विचार आया।
6: क्या वही शहर, वही गलियां, वही लोग, इस जगह पर रहते रहते अब बहुत दिन हो गए हैं। मुझे जरा बाहर निकलकर दुनिया देखनी चाहिए।
5: ये संयोग ही था कि उसी समय क्योटो में रहने वाले मेंढक के मन में भी यही विचार आया कि उसे भी बाहर निकलकर कुछ भ्रमण करना चाहिए। अगले ही दिन दोनों मेंढकों ने अपनी अपनी यात्रा शुरू कर दी। दोनों नगरों को जोड़ने वाला एक ही मार्ग था। रास्ते में दोनों की मुलाकात हो गई। ओसाका के मेंढक ने क्योटो के मेंढक से पूछा,
6: तुम कहाँ जा रहे हो मित्र?
7: मित्र, मैं ओसाका जा रहा हूँ।
6: और तुम? मैं क्योटो जा रहा हूँ।
5: दोनों मेंढकों ने लंबा रास्ता तय किया था। वे बहुत थक भी गए थे। उन्होंने सोचा, क्यों ना थोड़ा आराम भी कर लिया जाए। वे पास स्थित एक बड़ी सी चट्टान की छाया में जा बैठे और बातचीत करने लगे।
6: यहाँ थोड़ा आराम है, थोड़ा सुस्ता लिया जाए है? तो जरा मुझे भी बताओ कि यहाँ तक की यात्रा कैसी रही?
7: भाई, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। रास्ता बहुत सुंदर है। तुम तो जानते ही हो कि ये चेरी ब्लॉसम का समय है। चारों ओर चेरी के फूलों की भरमार है। और हाँ, जब मैं एक पहाड़ी के पास से गुजर रहा था ना, तो ट्रेन भी देखी। वहाँ रहने वाले एक मेंढक भाई से पूछा तो उसने बताया कि इसे बुलेट ट्रेन कहते हैं। क्या तेज गति थी। जब तक मैं ठीक से देख पाता तो वो गायब हो गई। कहते हैं कि इस ट्रेन से सिर्फ 15 से 20 मिनट में ओसाका से क्योटो पहुंचा जा सकता है।
6: भाई वाह।
7: अब तुम अपनी यात्रा के बारे में भी तो बताओ।
6: मेरी यात्रा भी बड़ी अच्छी गुजरी।
7: अच्छा,
6: पूरे रास्ते में हरी भरी प्रकृति और साफ सुथरे शहर। और हाँ, मैंने भी रास्ते में चेरी ब्लॉसम के फूल देखे।
7: वाह,
6: हल्के गुलाबी और सफेद रंग के ये फूल बहुत सुंदर हैं। सुना है इन फूलों को हमारे देश की पहचान माना जाता है। बहुत अच्छा हुआ जो मैंने यात्रा करने का निर्णय लिया, वरना मैं तो वहीं खड्ड में पड़ा रह जाता।
7: हाँ, ये तो है।
5: दोनों मेंढक एक दूसरे को अपनी यात्रा का हाल सुना रहे थे। अचानक ओसाका के मेंढक के मन में एक विचार आया। वो बोला,
6: मित्र, कितना अच्छा होता यदि हमारा आकार थोड़ा और बड़ा होता।
7: क्यों? आकार बड़ा होने से क्या होने वाला है?
6: आकार बड़ा होने से हमें इतनी यात्रा तो नहीं करनी होती।
7: हैं? वो कैसे?
6: अरे भाई, मैं समझाता। आकार बड़ा होता तो हम किसी भी पहाड़ पर चढ़कर देख लेते कि जहां हम जा रहे हैं वे शहर देखने लायक भी हैं या नहीं।
7: हाँ, कहते तो तुम ठीक हो, पर इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये काम तो हम अभी भी कर सकते हैं।
6: वो कैसे?
7: अरे वो ऐसे कि हम पास के पहाड़ पर चढ़कर एक दूसरे का सहारा लेते हुए अपने पिछले पांवों के सहारे खड़े हो जाएं। हाँ, इससे हमारा आकार भी बड़ा हो जाएगा और फिर हम आसानी से उन शहरों को देख सकेंगे जहाँ हम जाना चाहते हैं।
6: भाई वाह!
8: दोनों मेंढक इतने उत्साहित हुए कि वे उछलते हुए पास के एक पहाड़ पर चढ़ने लगे। दोनों बड़ी मेहनत के बाद एक पहाड़ के शिखर पर जा पहुंचे। लंबी और ऊंची चढ़ाई के कारण

0: दोनों काफी थका हुआ महसूस कर रहे थे।
1: बड़ा ऊंचा पहाड़ है, हाँ पसीने आ गए, चारों टांगे दुख रही हैं।
2: ये तो है, चढ़ते रहो चढ़ते रहो।
3: बड़ी मुश्किल चढ़ाई थी।
2: हाँ
3: चलो पहुँचे तो सही।
2: वो तो है, लेकिन मित्र मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है।
3: हैं?
2: हाँ, क्योंकि अब हम शिखर से उन शहरों को देख सकेंगे।
3: हाँ, मैं क्योटो देखूंगा।
2: और मैं ओसाका।
3: हाँ, क्यों नहीं, चलो
2: चलो।
0: तो साथियों, हुआ ऐसा कि ओसाका के मेंढक ने उछलकर अपने अगले पैरों को क्योटो के मेंढक के कंधों पर रख दिया और क्योटो के मेंढक ने भी ऐसा ही किया। अब दोनों मेंढक अपने पिछले पैरों पर खड़े थे, उनके अगले पैर एक दूसरे के कंधों पर थे। दोनों ने गिरने के डर से एक दूसरे को कस कर पकड़ रखा था।
3: अरे अरे अरे अरे, ध्यान से।
2: आ, चलो
3: संभल कर संभल कर,
2: कहीं गिर ना पड़े मित्र। ये ठीक है।
3: बचे।
0: यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन दोनों ने एक बात की ओर ध्यान नहीं दिया था कि उन्होंने अपनी पीठ उन्हीं शहरों की ओर कर रखी थी जिन्हें वे देखना चाहते थे। इस प्रकार ओसाका से आया हुआ मेंढक ओसाका को ही देख रहा था और क्योटो से आया हुआ मेंढक क्योटो को।
3: हैं? ये क्या, क्योटो तो बिल्कुल ओसाका की तरह दिखाई पड़ता है, अब तुम्हें क्या दिखता है मित्र?
2: क्या बताओ मित्र, मुझे भी ओसाका क्योटो की तरह ही दिखाई दे रहा है।
3: ये तो सचमुच बड़ा धोखा हुआ। मुझे लगता है यहाँ तक आकर मेरा समय ही नष्ट हुआ। मैं तो उसी खड्ड में ही ठीक था
2: और मैं उसी छोटे से तालाब में ही ठीक था। क्या लाभ हुआ इतनी यात्रा करने से, इतना कष्ट सहने से। चलो चलो यहाँ से।
3: हाँ चलो।
0: फिर क्या था, दोनों मेंढक अपने अपने घर वापस लौट गए। तो साथियों, अभी आपने सुनी ये जापानी लोक कथा, आशा है आपको पसंद आई होगी। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा सोचिए, इन दो मेंढकों की यात्रा क्यों व्यर्थ हुई? किसी यात्रा से पहले हमें किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, इसकी एक सूची बनाइए। क्या आपके क्षेत्र में कोई ऐसी हास्य प्रधान लोक कथा है जिससे ये संदेश मिलता हो कि यदि कोई कार्य सोच समझकर नहीं किया जाए तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? जापान के क्योटो और ओसाका शहरों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए और पता लगाइए कि वे क्यों प्रसिद्ध हैं।
4: अभी आपने सुना कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम दो मेंढकों की यात्रा। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन मोहम्मद फैजान खान, कलाकार मुइनुल हसन नियाजी, वैभव श्रीवास्तव और ममता मलकानी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सौम्या मलिक। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। आशा है श्रोताओं, आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: आइए अब चलते हैं एक और यात्रा में कार्यक्रम नमक के साथ।
2: इस कार्यक्रम में भारत पाक विभाजन के पश्चात एक स्त्री की यात्रा के बारे में बताया गया है। जब वो पाकिस्तान से भारत आती है, उसने महसूस किया कि बेशक दोनों देशों के बीच सीमाएं खींच दी गई हैं, लेकिन लोगों के हृदयों में आज भी कोई सीमा रेखा नहीं है।
3: खुदा खैर करे राहिल, क्या नाजुक वक्त है।
4: जी,
3: हिंदुस्तान पाकिस्तान ने नेकी, मोहब्बत और रहम दिली सब पर पहरा खड़ा कर दिया। अब देखना, कल मेरी दिल्ली की रवानगी है और दिल है कि कांपे जा रहा है।
4: अरे सफिया बाजी, दिल्ली लाहौर की दूरी ही कितनी है, यहाँ से 10 फलांग। आप तो बेवजह परेशान हो रही हैं।
3: अरे राहिल, इस 10 फलांग ने तो 2 मुल्कों की शक्ल इख्तियार कर ली है। दिल्ली और लाहौर तो उन लोगों से पूछो जिनकी आंखों के पानी में शहर झांकता नजर आता है।
4: बाजी, आप तो अदीब ठहरी, आपसे भला कौन बहस कर सकता है। अरे बाजी, इस पुड़िया में क्या है।
3: नमक, लाहौरी नमक।
4: लाहौरी नमक, आप इसका क्या करेंगे।
3: देख राहिल, अपना पुलिसिया तेवर अपने पास ही रख। और इसमें इतनी हैरानी क्यों है, नमक ही तो ले जा रही हूँ। क्यों भाई, नमक नहीं ले जा सकते क्या।
4: नहीं ले जा सकते बाजी, गैर कानूनी है ये
3: है?
4: और वैसे भी नमक का आप करेंगे क्या। आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज्यादा नमक आया है।
3: मैं हिस्से बिखरे की बात नहीं कर रही हूँ, आया होगा। मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया है।
4: मेरी माँ? बाजी, हमारी माँ बंटवारे से पहले ही अल्लाह को प्यारी हो गई हैं। और कौन सी माँ है जो हमारी है।
3: हमारी नहीं राहिल, मेरी माँ। दिल्ली में मुझे एक सिख बीबी मिली, वही छोटी छोटी चमकदार आंखें जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहमदिली की रोशनी जगमगाया करती है, बिल्कुल हमारी अम्मी की तरह। हमारी अम्मी जैसा कद, अम्मी जैसा भारी भरकम जिस्म, सफेद मलमल का दुपट्टा ओढ़ा करती हैं वो, बिल्कुल हमारी अम्मी की तरह।
4: देखिए बाजी, बंटवारा हुए काफी अरसा बीत गया, अब तक तो वो वहां ठीक से रच बस गई होंगी।
3: लेकिन लाहौर नहीं भूला उनसे राहिल, साटा लाहौर। जब मैं लाहौर तेरे यहां आ रही थी तो मैंने उनसे पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहें तो मुझे हुक्म दीजिए। तो मेरी माँ हिचकिचाकर मुझसे बहुत ही आहिस्ता से बोली, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना।
4: देखिए बाजी, मोहब्बत, जज्बात, आत्मीयत, ये सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन नमक, अरे बाजी आपको कस्टम से गुजरना है, और अगर एक भी चीज ऐसी वैसी निकल आई ना तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले। आप कानून तो जानती नहीं।
3: अरे निकल आने का क्या मतलब, मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, छिपा के लेकर जाऊंगी क्या। मैं तो दिखा के जता के लेकर जाऊंगी।
4: ओहो बाजी, आप समझ नहीं रही हैं, कानून भी तो कोई चीज है।
3: फिर वही कानून कानून कहे जाते हो, क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं, कुछ मोहब्बत मुरव्वत इंसानियत के नहीं होते। आखिर कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, क्या एक तोहफा भी नहीं ले जाने देंगे मुझे।
4: ओफो, अब आपसे कौन बहस करे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ बाजी, आप ले जा नहीं पाएंगी ये नमक, और बदनामी मुफ्त में हम सब की भी होगी। आखिर आप कस्टम वालों को जानती कितना है?
3: देख राहिल, कस्टम वालों को जानूं या ना जानूं, पर इंसानों को थोड़ा बहुत जरूर जानती हूं। इस बुढ़िया को कहाँ रखूं? ऐसा करती हूँ कि इन्हों की टोकरी में नीचे दबा देती हूँ, कोई पहचान भी नहीं पाएगा, कस्टम वाले तो खोज भी नहीं पाएंगे। नमक की पुड़िया मैंने छुपा तो दी, अगर कस्टम वालों ने खोज ली तो? नहीं नहीं, ऐसा करती हूँ मैं ये पुड़िया हाथ में ले लेती हूँ, मैं खुद ही बता देती हूँ उन्हें। हाँ, ये ठीक रहेगा।
4: अच्छा बाजी, अब लाहौर कब आएंगी आप?
3: मालूम नहीं राहिल, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं।
4: अरे कहाँ जा रही हैं बाजी आप?
3: नमक का मोल पूछने।
5: आइए आइए जनाब, आप आइए, इधर आइए, इधर आइए। ए जनाब, आपसे कह रहा हूँ, आप इधर आइए। हाँ हाँ ठीक है,
3: लगता है यही कस्टम ऑफिसर है, इन्हीं से बात करती हूँ। सुनिए
5: जी, फरमाइए।
3: आप कहाँ के रहने वाले हैं?
5: मेरा वतन दिल्ली है, आप भी तो हमारी तरफ की मालूम होती, अपने अजीजों से मिलने आई होंगी।
3: जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ, अपने भाइयों से मिलने आई थी, वो लोग इधर ही आ गए हैं। आप
5: जी, जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है।
3: अब जी, ये थोड़ा सा लाहौरी नमक।
5: नमक? देखिए, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। और हाँ, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा, और जिन खातून के लिए आप ये नमक लेकर जा रही हैं, उन्हें मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा।
3: जी शुक्रिया।

0: चलो, खैरियत से दिल्ली तो पहुंच गई।
1: आप इधर आइए, इधर आइए।
2: मैं जनाब,
1: आप लीजिए जनाब, अपना सामान चेक कराइए।
2: लो जनाब, देख लो जनाब, हो गया जनाब, जाए।
1: हाँ ठीक है,
2: ठीक है जी, खुदा।
1: आप भी इधर आइए, सामान।
0: साहब, मैं एक गैर कानूनी चीज, ये देखिए मेरे पास नमक है थोड़ा सा।
3: आप इधर आइए।
0: हाँ जी,
4: हमको पूरा बात समझ में आ गया। चाय खाबो?
0: हाँ?
4: माफ कीजिए, चाय पियेंगे क्या आप?
0: नहीं।
4: मैं आपको कमाल का चीज दिखाता हूँ। मेरे पास नजरुल इस्लाम और रविंद्रनाथ टैगोर की ये किताबें। हाँ, ये मेरे मित्र सुनील दास गुप्ता ने 1946 में तोहफे के तौर पर दिया था।
0: तो साहब, क्या आप ईस्ट बंगाल के हैं?
4: हाँ, मेरा वतन।

0: पका है। जब डिवीजन हुआ तभी आए। मैं कोई 12-13 साल का था। ढाका में दोस्तों के साथ नजरुल इस्लाम को खूब मन से पढ़ता था। मेरा वतन ढाका है। और नमक, इसका वतन कौन सा? आपको राज का बात बताऊं? हम डाब आज भी अपने वतन ढाका का ही पीता है। किसी से कहना मत। वतन तो कस्टम वालों का होता है। इंसानों का वतन यहाँ यहाँ दिल में है, दिल में।
1: सही कहा साहब, इंसानों का वतन यहाँ दिल में है। मोहब्बत नमकीन भी तो होती है ना साहब। इन आंसुओं की तरह
0: नक्शे पर लकीर खींच देने से जमीन और लोग बट नहीं जाते।
1: ठीक कहते हो साहब।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम नमक, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
0: कुसुमलता,
1: जगबंधु,
0: चेतना
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯇꯥꯕꯤꯔꯦ NCERT ꯇꯤꯅ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔ ꯇꯧꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯎꯃꯪꯒ

सरजरी बथोरम परिंग सुगी नुंखल की पुंग मगा मिनिट तरा आरंभम तुम बिनाउ देवी अमडी मपांग सकप कुबा विषय तपिकनी नुंखल पुंग मगा मिनिट कुन मगा तकेलंबम मंदा किनी देवी की कोंजल दा मतम से सिंग मतम मतम गुना लांथोक तुम तान जगनी वेसल म्यूजिक की थोरम फंग बिगनी नुंखल पुंग मगा मिनिनि फु नुंखल पुंगनी मिनिट तरा तबिगनी सक नाइरबसिंगी वारी ngasigi warida tabigani homi

0: 허지게 돕는 따비리 웨스턴 뮤직의 더름 더름 산독도는 딴자리바시 아카시바니 인팔기 강라 채널기 더름디 허지 능틀기 공안이 미니 따라짜리 따비리시 샥나이르부 싱기워리 샥나이르부 싱기워리 나시기워리다 부두노 락자리 Homi Baba Homi Baba Soklising Magatamapan Subnamapan October Gitan Kuntrada Housing na Mumbai Haina Kaunaraba Bombay da Parsi Imungamada Poki Homi Baba Gimapung Baba Mamingdi Homi Jahangir Baba Kawi Machin Mana Unupa Anigi Manungda Mahakna Ahani Mapagi Mamingna Jahangir Hormuzji Baba Kawi Matamdugi Saknai Ba Ukil Amani Mamagi mamingna Meherbai Premji Pandey Kawi Homi Baba na pikling edigi hauna mai masingda thoidokna budhi lauching changkon ba angang amoina hauraki maki primary siksha cathedral amadi John Cannon da tamlaba matung Royal Institute of Science da graduate loishan ki maka taba mai masingi damak Cambridge University da tamna namgi damak soklising ma chamapan kuntareta magna Bombay thadoklami adobu Cambridge University yauruba matungdadi physics ta makha ta na ma ki mahi adu tam thaning bagi apamba phongdokladuna mapa ibungu Jahangir Hormuzji Baba da city iraktuna phongdorakki mapa ibungu nasu machanupa gi apamba adu da yabiraduna pungning thaugat pirakki baba na Cambridge da physics ta makha tam thaduna cosmic ray absorption amadi masigi effect haibasida PhD loishan ki baba na soklising ma samapan kuntra ma pan phawba mapham du da lairami amadi mapham du da lairingai da malem gi masak naiba bigyanik kya ga thabak taumina na bagi tanja phangki mak na bharat ta halak laba matung laibak asubu bigyan gi lamda mangjin thaba amadi chaukhat pa laibak ama ohening bagi wakhal gi aning baga iroina na makhoi gi imung manung amadi mari mata su oiba udyogpati Jamshed ji tata da haijaduna makhoi gi trust ki phandegi tata institute of fundamental research bombay lising maga samapan nifu manga da linkhat ki magna bharat ki ahan ba pradhanmantri oiriba pandit jawaharlal nehru da nuclear energy na bharat na chaukhat palai bak ama oinana bagidamak sangchilak pagi lambi da laurak kadaba thaudang gi maram da macha khaina sithi iduna amadi wari saduna kangalami asigumba maki wisdom amadi personality asida pandit nehru nasu yamna thajarami amadi soklising maga samapan nifu nipanda magna chairman oiduna atomic energy commission linkhat ki amadi commission asigi mitieng khada trombe da ahanbo oina nuclear power facility ama soklising maga samapan yangkhai marida thambangam ki soklising maga samapan yangkhai manga baba na bharat ki mihut oina atomic energy na shanti gilamda amadi sakhat thawrang da sijinna bahai ba hiramda un conference da wangang duna delegate mayam gi pukning chingshin bangam ki amadi malayam gi miyam na baba bu nuclear scientist oina sakhang ba oiki mahak na jati gi damak nuclear gi lamda lauri ba thaudang bu sakhang duna lising ma samapan yang khai marida padma bhushan upadhi piduna ikai kumna ba utki bharat ki ani subha pradhan mantri shri lal bahadur shastri nasu baba bu ma ki mantri mandal da cabinet minister oina ba propose tawrakki adabu mahakna rajniti da sang ba pam ki de ma ki apam badi laibak asu gi nuclear program gi planning gi advisor oina laiduna bharat na nuclear gi lamda mangjin tha ba laibak ama oina malem da ohen ba haibasini magna bharat ki damak ta nuclear program gi lamda lauri ba thaudang asidegi baba bu bharat ki nuclear program gi mapa father of the indian nuclear program haina khangna rakhi vienna da pangthok ba nuclear energy conference yauna bachat pada soklising ma samapan humputaru january gi tang kuntaru france ki alf singh sangi mont blanc kauba mapham da plain kaib gi thaudok amada mioi sham ga taratret punsi pikham na kibada homi baba su laibak thiba thaudok asida taibang pan thadoki adobu hangnari bawa hangdi bharat ki nuclear program gi mapa haina khangna ba homi Jahangir baba na laikhi da thawong asi bharat pu nuclear gi shakti laibale bak oihaning da ba shakti singi kujil thaurangla haibasini
1: sarnai re basingi warida hoje gadam na tabire homi baba
0: आकाशवाणी इम्फाल हौज नुथिल पुंगानी मिनट तरामा चलुकले दिल्ली दिग रिले दोपहर समाचार फंगबिरगनी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पेपर लीक घटना के बाद ढाई महीने में दोषियों की गिरफ्तारी सहित कई कदम उठाए गए। नीट पेपर लीक मामले पर सरकार और सीजेपी के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की वार्ता जारी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण सोमवार तक स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में दमनकारी गतिविधियों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा नजरअंदाज किए जाने पर निराशा व्यक्त की। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया और भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं, दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
2: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे, विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी, कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
1: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों

0: की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के निर्णय की सराहना की है। श्री मेघवाल ने मीडिया से कहा कि इन अदालतों में मामलों की सुनवाई प्रतिदिन होगी।
1: प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा को देश के शिक्षा प्रणाली के लिए मील का पत्थर बताया है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह तथा कई अन्य भाजपा नेताओं तथा कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की बातचीत जारी है। ये बैठक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर युवाओं के नेतृत्व में चल रहे विरोध प्रदर्शनों में हुए महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बाद हो रही है। सीजेपी के प्रतिनिधियों सौरभ दास, आशुतोष रांका, अभिजीत दिपके और दीपक बलियान ने सरकार द्वारा उनकी दो शर्तों को स्वीकार करने के बाद वार्ता के लिए सहमति जताई है। ये शर्तें हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी और हाल में हुई परीक्षाओं में अनियमितताओं से प्रभावित विद्यार्थियों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा। संसद के दोनों सदनों में आज लगातार पांचवें दिन नीट पेपर लीक के मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। कई बार के स्थगन के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है।
2: पार्लियामेंट हम लोग चर्चा नहीं करेंगे तो बिल्कुल अच्छा संदेश नहीं जाएगा। मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूं, आप अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को थोड़ा समझा दीजिए और बाकी कई पार्टीज के एमपीज भी निजी तौर पर सबने अपना मत रखा है कि चर्चा होना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज पांचवा दिन है, हम इसमें एक अच्छा सार्थक बहस क्यों नहीं कर सकते हैं।
0: सभापति जगदम्बिका पाल ने कहा कि विपक्ष को सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करना चाहिए। इससे पहले नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। दिन में 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला सहित सदन के सदस्यों ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
3: दिनांक 26 जुलाई 2026 को कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के उन वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है जिन्होंने अत्यधिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, विषम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम की परवाह न करते हुए अद्वितीय वीरता और अटूट संकल्प का परिचय दिया।
0: करगिल शहीदों की याद में सदन में मौन भी रखा गया। उधर राज्यसभा की कार्यवाही भी इसी मुद्दे पर शोर शराबे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामा जारी रखा। दिन में 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदन में करगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि करगिल विजय दिवस 1999 के करगिल युद्ध में भारत की विजय का स्मरणोत्सव है।
4: On this occasion, this house pays its respectable homage to the gallant martyrs who made the supreme sacrifice in service of the nation. We also express our profound gratitude to all the members of the armed forces.
0: राज्यसभा में भी शहीदों के सम्मान में मौन रखा गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि जब तक शिक्षा मंत्री को पद से नहीं हटाया जाएगा, विपक्ष नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले पर किसी भी चर्चा में हिस्सा नहीं लेगा। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गांधी ने कहा कि छात्रों की तीन प्रमुख मांगे हैं, जिनमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी शामिल है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज नई दिल्ली सहित 18 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बारह खंभा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी, लेकिन नई दिल्ली स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को नीट यूजी पेपर लीक मामले के बाद सुधारों को लागू करने में हुई प्रगति पर एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हलफनामे में केवल अस्थायी उपायों पर निर्भर रहने के बजाय सुधारों को संस्थागत रूप देने के लिए उठाए गए कदमों का स्पष्ट विवरण होना चाहिए। सरकार ने सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बारे में धमकी भरे बयान देने के वीडियो का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि वीडियो फर्जी है और एआई से बनाई गई है। इकाई ने बताया कि श्री गोयल ने प्रदर्शनों के संबंध में ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल लेफ्टिनेंट जनरल राजीव पुरी के एक वीडियो को लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस वीडियो को फर्जी और डीप फेक बताया है। वीडियो में दावा किया गया है, जो गलत है, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुरोध पर जनरल पुरी ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के विरोध प्रदर्शनों के बीच राजधानी में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती का आदेश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में 8 स्थानों पर तलाश अभियान चलाया। ये कार्रवाई एक कथित बैंक धोखाधड़ी से धन शोधन मामले के संबंध में की गई है। चेन्नई के पास मधुरंथकम में आज एक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। पुडुचेरी से चेन्नई जा रही एक कार की लॉरी से टक्कर के कारण ये दुर्घटना हुई। हादसे के समय पिता और पुत्र सहित 3 लोग चेन्नई हवाई अड्डे जा रहे थे। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की विश्व प्रसिद्ध बहुड़ा यात्रा जारी है। पहंडी अनुष्ठान पूरा हो चुका है और तीनों देवी देवताओं को विधिपूर्वक उनके अपने अपने रथों पर विराजमान कर दिया गया है। अन्य पारंपरिक अनुष्ठानों के संपन्न होने के बाद रथों को खींचने की प्रक्रिया शुरू होगी। एक रिपोर्ट।
5: भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की पहंडी रस्म सफलतापूर्वक पूरी हो गई है और इन भाई बहन देवताओं को बाहुड़ा यात्रा श्री जगन्नाथ मंदिर वापसी की शुभ यात्रा के लिए उनके रथों पर विधिवत विराजमान किया गया है। श्री गुंडीचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक फैली पूरी ग्रांड रोड लाखों भक्तों से खचाखच भरी हुई है। वापसी की यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ मौसी माँ मंदिर पर पारंपरिक रूप से रुकेगा, जहां भगवान को पोड़ो पीठा का भोग लगाया जाएगा। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @EIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। बुखारेस्ट में भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि प्रस्तावित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता व्यापार, निवेश और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देकर आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।
6: इंडिया EU फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज एन इम्पोर्टेंट माइलस्टोन इन इंडिया EU स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन आर सेंट्रल टू द कंटेंपरेरी पार्टनरशिप. विद ए कंबाइंड मार्केट ऑफ नियरली 2 बिलियन पीपल एंड एन इकोनॉमिक जोन ऑफ अराउंड 25 ट्रिलियन डॉलर्स, द इंडिया EU FTA इज एमंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक पार्टनरशिप इन द वर्ल्ड.
0: भारत ने पाकिस्तान के

0: अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित दमन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया को लेकर निराशा जताई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने कहा कि कुछ मामलों में संयुक्त राष्ट्र की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी घटनाओं पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जाता है। ये टिप्पणी पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश के बाद आई है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और दुनिया भर में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है। ब्रेंट क्रूड की कीमतें मई के बाद पहली बार 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 403 अंक गिरकर 75,989 जबकि निफ्टी 116 अंक गिरकर 23,754 पर पहुंच गया। भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अनाहत ने मिस्र की हबीबा रिस्क को हराया। अब सेमीफाइनल में अनाहत मिस्र की बार्ब समेह से खेलेंगी। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। गुजरात में पिछले 3 दिन से मूसलाधार वर्षा के कारण राज्य में जनजीवन अस्त व्यस्त है। एक रिपोर्ट।
1: दक्षिण गुजरात में 2 दिन तक भारी बारिश के बाद आज उत्तर गुजरात में भी भारी बारिश हो रही है। पिछले 6 घंटों में उत्तर गुजरात के वावथरा और पाटन जिलों में 6 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। सुबह से अब तक राज्य के 239 तहसील में बारिश हुई है। किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए अहमदाबाद, नवसारी और वलसाड में NDRF, SDRF की कुल 49 टीमें और भारतीय सेना की 6 टीमें तैनात की गई है। दूसरी ओर राज्य में भारी बारिश के बीच राहत और बचाव का काम भी जोरों पर चल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पेपर लीक घटना के बाद 2.5 महीने में दोषियों की गिरफ्तारी सहित कई कदम उठाए गए। नीट पेपर लीक मामले पर सरकार और CJP के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की वार्ता जारी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण सोमवार तक स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए। और भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी इम्फाल का कंगना चैनल है। मीडियम वेव 340.1 मीटर अर्थात 882 किलोहर्ट्ज पर फौजी भाइयों का कार्यक्रम अब आरंभ होता है। फौजी भाइयों, आपकी सेवा में प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आगाज करते हैं फिल्म दिल बेचारा से मोहित चौहान और श्रेया घोषाल की आवाजों में इस गीत के साथ। गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य और संगीत AR रहमान का।

अगला गीत प्रस्तुत है फिल्म एजेंट विनोद से हमसिका अरिजीत सिंह और जॉय के आवाजों में। गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य और संगीत प्रीतम का।

अभी आपने सुना फिल्म रॉकस्टार से कविता सुब्रमण्यम का गाया गीत, गीतकार थे इरशाद कामिल और संगीत A.R. रहमान का। फौजी भाइयों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी इम्फाल के कांगड़ा चैनल पर प्रसारित कार्यक्रम फिल्म संगीत। अब सुनते हैं फिल्म फैंटम से अरिजीत सिंह का गाया गीत, गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य और संगीत प्रीतम का।

अगला गीत प्रस्तुत है फिल्म बदलापुर से रेखा भारद्वाज और अरिजीत सिंह की आवाज़ों में। गीतकार है दिनेश विजान एवं प्रिया सरैया और संगीत सचिन जिगर का।

जेमे की थोरम ताबीरे ताबीरे बसे आकाशवाणी इम्फाल की कंगला चैनल की थोरम नहीं हौजिक नोंथल की पुंग हम खाईतारे संदोक्चरी मार पाइटी मरी थादों की थोरम सिंह मथा मथा होना

आकाशवाणी इम्फाल जू तुच आदाय सहारे दाकुरे पुम विश्व तायुसूलै कपिजु हाय मीडियम वेव मीटर कैस रायदाय पॉइंटली अलग किलो हर्स के चार चाहे ए एफ एम चैनल मेगा हर्स के लिए अस पॉइंट अंगोही नई अरे कैसो आजुको हाय किलो नई ए मोशो ही हाय लरे रजु मवी वॉइस दिजु हाय जोन बाशो ही ने किलो नई ए मोशो ही हाय दाओ पोपो माइलो कैन नी तो अल हैप्पी वी मेहिनो किलो जुसुले आकाशवाणी इम्फाल जुविको हाई मेरी को नानी फोपो जुसुले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी न्यू पाओ प्यो न्यू डिपार्टमेंट्स मा हाय नीट वी पेपर लीक सुजु ही ट्रैक थासो न्यू सोलो जु कोर्ट छाय प्रपोजल पयो दिखो जु फाकी पिन तो न्यू शोमा वासु कुनी ड्राफ्ट सुखाय दिजु हाय दो खैपु हिङाव पय दो खै वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग न्यू माइपू मोदी न्यू पाओ ड्राफ्ट हाई ट्रैक्स थासो न्यू सुजु अल्या कल्प्रिट्स माइ गे पनिशमेंट हाई पुजु हाई लोए ए सहाय जो कैबिनेट माइ न्यू फाजु सुलाए पी न्यू पाओ कैबिनेट माइ कोले आ फालोनी फाइनल डिसीजन आ पोलाए जा प्राइम मिनिस्टर न्यू पाओ पार्लियामेंट सेशन छोटी तैथिया आलिकी हाउ ताजु हाई गवर्नमेंट यू बिल हाना हाय थासो न्यू पासो रेदो न्यू तेलाइसो न्यू ब्युएटा प्राइम मिनिस्टर न्यू पावे तालाजु खो आहायदा ही पेपर लीक सुजु इंसिडेंट फा न्यू वा आलोसो मोआ सकु न्यू ब्यु कल्प्रिट माय न नुजु खे हाय जेल ही न थ्यु न्यू ब्यु माइपु मोदी न्यू पावे गवर्नमेंट फे आराय रे कैजु रेस्पोंसिबिलिटी हा लरे दुजु स्टूडेंट्स मा हाय पो तेलसो हामोन्यू ए थासो न्यू एग्जामिनेशन हाय सोलाइटा तालाजु खो हाय दा जहिनो पावे दिल्ली हाई कोर्ट न्यू फर्स्ट स्ट्राइक कोर्ट हाई पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मेंस एट 2024 विखे हेनु केस कपिले कपिजुसुले सह पब्लिक एग्जामिनेशन ही अनफेयर प्रैक्टिस जु खेमा हाय थाशो नि डिस्पोजल सु पुइरे दोनिओ एक्टिविस्ट सोनम वनचुक हाय तेथे कैचुरु खल कुजु हाय दो खै खैजु सुरे पिनो प्राइवेट हॉस्पिटल गुरुग्राम हिनेउ यूनियन मिनिस्टर जे पी नाडा आला जितेंद्र सिंह बिआपी वे खल जु हाय आखै सुजु सुए दिल्ली मेट्रो रेल कोऑपरेशन DMRC हाय मेट्रो स्टेशन किने फाहाय क्यूरे जु शुना तले चो आने से हाय शिरो फाहि न्यूज हाय चुचु नेशनल कैपिटल हि सिक्योरिटी दोनो दिल्ली पुलिस न्यू पौजु हाय पाकिस्तान न्यू बेस जु सोशल मीडिया काय दे रेचा फाही फाहाय मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन ता बिजु के हाय आइडेंटिफाई सुआ सु शिलुआ ब्लॉग सुलाय रे दिल्ली पुलिस DCP सुमित जा न्यू पौजु हाय सोशल मीडिया हाय तो न्यू लारे दुजु नले माय ये दाजु रूमर्स न्यू मिस ली सु पुएटा पावे सवानी पे न्यू मा के मा ही हाय इन्फॉर्मेशन तारली लुचिया सि लातामोज न्यू वेरीफाई सु पुए उटा खोए अग्रताला खोनसंग एक्सप्रेस ट्रेन हाय जु रेड एकेसो आ हपोतान जु सुरे सहाय पैसेंजर माय ते ताजु हाय सस्पेंस उले रे रेकी मणिपुर ही पो आस जला बेरो जु बिजु वानी ए सहाय जून जखुंग आदे 2023 की सस्पेंस उले जुसुए आला सीनियर डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF लुंडिंग न्यू सस्पेंड हाय सुले स्टेटी सिक्योरिटी सिचुएशन विवानी अग्रताला कोनसंग एक्सप्रेस ट्रेन हाय मार्च रुपाखु की हाय 2022 की एनोग्रेस उले जुसुए त्रिपुरा आला मणिपुर ही रेल लिंक ब्यूरो दोन्यू जु छुट्टी तैखे आंगो की ट्रेन सर्विस है रिजूम सुपो ताजु सुए आनी माइ पैसेंजर्स माइ हाय माइ दावने ताबाई ही ए रेगुलर सर्विस है तारे दो न्यू रेलवे अथॉरिटीज न्यू सुतौसो आ मॉनिटर सुपुजु सुलाई ताफाओ जु वेको आ हाय नि खाय सुलाई मोशो ही हाय लारो रजु माइ वी वॉइस दिजु हाय जोन बा सोहिनी कलुजु सुलाई की

आकाशवाणी इम्फाल चु तिलचा आंगो ताकुरे पुम विश्व जहाने आखाई सुलै खुपिजु दुनिया कलशुरे दोशो तिलहाना हिने दखले मे वैशिनु वैनु बिखाइतियो

आकाशवाणी इम्फाल सैक साग नई दिरों बुतों बुजांग चुरीपदय तंपब सैजान गुतों कबई मिटालम तंपब मई मेडें वेब मीटर फाइट मिट्टी पोइन कचरु किलो हाउस फाइट सत लेक सत लेक नई थावरेम को नाइब थे सैजान गुतों चम आकाशवाणी इम्फाल लाउद को सैजान गुतों चम सम तंपब मई शिवाजी का मई जांग चकु इंथांगने तत्कई गंग मई रथ जात्रा कांग जाय मे मुंग असै पुन जात्रा कांगले लांग पन नलो पुनि थे कबी सुमे मुंग इंफाल तों श्री श्री गोविंद जी मंदिर सगोम बन खौ नाय मे श्री श्री गोविंद जी खनिना संगाई प्रो खौ नाय मे इस्कोन मंदिर खौ लांग पत कने इंजांग तों गबम अजु खनिना कांग जाय मे तों मुंग लांग कने असै हे नेशनल थर्मल इंजीनियर तिमिकले तिमि हेरे कमुंग ता जुलाई बुतों बुजांग चुबदे खौ

खनजेल फिल्म से किताबीरे लाइस्रम मेमन सकई सैरेंब तंजम खोरा सैरंगना नौमाइम पहारी मथंग दलों को चरीब सैसपी बेबी कविता अमंबी फिल्म की सैनी के सी रोबीन प्रेमीला की मेयका हामोम नबना सैरंग इसईनी।

अरू भन्नते फिल्मदगी बी कुंज बेहरी शर्मा मदी सुनीता नेप्रम अनि पुनः सबिना बैसैने केसी रोबिना मदी प्रेमिला की मयता सगोल सेम तिजेन्द्र न सैरांग बैसैने।

的腿比那桃红树枝那么干的，没让唐军那腿比给你拉起那起来那，没耐心给我看的黑比比了的呢。युवराजतो कमदौरी मया मुंगी राज शोभा दूदगी हलपद युवराजतो ममा तो ना खुदों हलगा东街头风沙不白的灯啦，苦东怕另外忙个灯啦，妈妈不是这忙个苦一道，米得的皮囊都先擦了个，就不拉这个不那个度的，没下个没下度皮的灯啦，脑底沙度那喷么的。Pami ba mama singi marak degi Toi bi bokse bi mama ne Yen kurang bi di mama du di Masa gi masa hen ban na Matam du di ibe me Nong kong bu gung kau kalah

0: सिक्षिन भी गदबा नापी मांगन बंगंबा मसल सुनिया और बसाथी दी संगी मकोक ये पने काउबीरगनु लोमी सिंगे मरु साथी
1: हौकीब इंगलिसिंगनी जुलाई की तांग अमा थांग जनुमित के लाइबक थीब थौदोक अमद लैखिद्रबा कोंगपाल खाइदेम लैकाइदगे वाइखोम निल कमल बोइचा हायरगसु खंगनबा मियामना नोंगपोक योइरेनबा हायना मिंगथोन पीख्रबा महाकी निंगसिंग मितममा माइखुम हांगदोकपगी थौरम लागलिब जुलाई की तांग कुनमंगा इंगेनगी तरामाथुइनी पानबा थांग जनुमित के अयुकी पुंगमापन मखाइ ताबदा कोंगपाल खाइदेम लैकाइद पांगथोकचेरगनि नुमित असिदा मियामना सरुक याबिरनबा पाउजेनजरि पाउजेनजरि बस वाइखोम इबोयाइमा अपोकपा अमदि वाइखोम तोंदोन अपोकपि कोंगपाल खाइदेम लैकाइ
2: हयिं नुबिदां पुंतुर कमिनिनिपु कुंगंगि थोरुमदा ताहनचकनि माइबम तोंबगि खनुविसै अरुबदना लाइव फोनिन प्रोग्राम हालो कुंगंगदा थामजरि फौना नौरिङै तांखकता लखोटकदब थौरांसिं एकोगि स्टुडियोदा एक्सपर्ट विन लिंगसिन बिगदबा KBK Thobal ki farm manager Dr. Wakom Jiten Singh Thorum lantuk bi kadabe Khoirakpam Minakshi Puthokpana Nonthombam Roma Ngasinu midang pung tari ka minini pumanga Kangla channel da tahan jagani Sayol sida Khonjin bamadi Thorum lantuk bi kadabe Priscilla Thongam Dabiri basi Akas Bani Phalgi Kak Hauzinu midang ki pung tari makhai tare Manipuri da pauta birasi
3: आकाशवाणी इम्फाल नांगोम किरण पाउ पाजरी अहानबद मरुवैब पाउ मुख्यमंत्री युमनाम खेमचा नहायरी मियाम पुन सौखत मिनदुना हेन फबलेंगाक सासंग महाउ पीनबा माके सरकार न होनरी नुमित मापनि चुमन सथरक पकांग सिंगबगि थौरम ngसी पूर्ण यात्रा कांगलेन पांगथोक तुना लोइसिले थौनाउजुम बसंत कुमार एमएलए नहायरी मणिपुरगि इरांग असिदगि राजनीतिगि खुदोंचाब लोंनना बहोनरी बसिंगदगि सेक्शन सी मणिपुर की डीजीपी मुकेश सिंह नंगासी टेक्नोपल जिला दसतुना ngaksel की फिवम हन्ने यंगचिनख्रे अमसुंग नेट क्वेश्चन पेपर लिखी मतांग नंगासी सुसरांग नव थोकपदगी संसद के सभा अनिमकी मिफम सथब यादतुना निंथौकाब नुमित फाउ यै थोकख्रे मुख्यमंत्री युमनाम खेमचा नहायरी मियाम की सौखत थोरांग सिंह पाइकतुना पुन सौखत मिनेदुना हेन फब लेंगाक सासंग महाउ पीनन बहनरी इम्फाल वेस्ट के सलामदा नौन साबा डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग दाइट की बिल्डिंग अमसुंग नौन साबा इमा मार्केट अम संगाबा की थौरमदा मुख्यमंत्री नहाई ngasi संगारीबा दाइट की बिल्डिंग अमदे इमा मार्केट असिना लमदम अदुगी मियामदा मगुल लैब शिक्षा पीनबा मियामगी पुनसी महिंग अमसुंग सेल थुंगी फिम हेन फगत अनबदा चाउन मतेंग ओइरगानी प्लानिंग डिपार्टमेंट ना इमा मार्केट अदु मपुंग फाना साब लोइदुना मियामद सिनब गंबगी दमक्सु महागना डिपार्टमेंट अदु बुथागत फोंगदोखी मुख्यमंत्री नहाई
4: डिस्ट्रिक्ट मियाम सिनन ग फायदगी साउ व डिस्ट्रिक्ट सी इम्फाल वेस्ट सी केंद्र तलाग हुंदुर द पुनब अदु मुख्य लडी इम्फाल वेस्ट सी द डाइट सेंटर अमक खांगदो से प्लानिंग डिपार्टमेंट ना मतेन पंग बिदला पकरो अहुं खरे न चंगा इमा मार्केट अदु सर्विस सु सेलमिलोंदा चोबा
3: लमसांग केंद्र की एमएलए सोरो खाइबम राजेन इम्फाल वेस्ट की डेप्यूटी कमिश्नर मयंग नमम राजकुमार यौना मकोक थोंबा ऑफिसियल कया सुसर्प याकी नमित मापनी चुम सथरक्प भगवान जगन्नाथ मयांबुंग बलभद्र मसनिबेम सुभद्रगी कांग सिंबगी थोरम ngasi पूर्ण यात्रा कांगलेन फांगथोकतुना लोइसिले इम्फाल की पैलेस कंपाउंड लैब श्री श्री गोविंद जी की मंदिर की मंदिरदगी भगवान जगन्नाथ मयांबुंग बलभद्र मसन इबेम सुभद्रा लेंथोरक्तुना रथ मथक्त तोंगदुना

0: दाखल कराई जाए मदुदी अल्कोहल ना थोहन बा अदुना अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है ना अदिकी केमिकल में आम सीजन लगा थोहन बा अदुगुंबा हेपेटाइटिस मखन खरा अदुग लुइना लुइना ना वायरस ना थोहन बा सिबुना खैना वायरल हेपेटाइटिस है ना खंगने हेपेटाइटिस है बसे करी नो न है बता रगे दी लिवर की सरुकता सोहली बा हजिक ना वायरस ना मियोय बगी हक्सांग द कोई अनाई की चैथिंग पीरी बा अदुगुंबा मखल अदुनी थमजग दोरी बसी
1: लागलीबा जुलाई की तांग को निपाल लेबाग पोक पनुमित की अयुक पुंग तरा ताब मतम दा तहन जगनी हिंदी वारी वताई थोरम दा इंग्लिसिंग अनी कुन निथोई कुन हुम दोई की सरचंद्र चट्टोपाध्याय पुरस्कार मना फंगलबा डॉक्टर वाईखोम चिंखई गान बगा उनदुन वारी शाबा उनबिरिबा सगुलसेम रोमा
2: उदय प्रकाश जो है सिर्फ हिंदी साहित्य नहीं वो एक तरह से ऑलराउंडर है हिंदी में ज्यादातर दिखते हैं तो उदय प्रकाश के जितने भी साहित्य है जैसे कहानी कविता आलोचनात्मक पुस्तकें इन सारे किताबों को लेकर मैंने अध्ययन किया है। एक तरह से ये क्रिटिसिज्म है उदय प्रकाश के संपूर्ण साहित्य पर मेरा काम है।
3: अच्छा मैरिज दी मैरिज आप इस पे डिस्कस कर रहे हैं तो आपके लिखाई में कितने किताबें आ चुके हैं या ये पहला है या पब्लिश कितना हो चुका है?
2: हिंदी का पहला है और मणिपुरी का एक और है। हिंदी मणिपुरी मिलके दो पुस्तकें मेरी हो चुकी हैं।
3: तो आगे जाके आप कितना और लिखेंगे, क्या आपका प्लान्स है? सपने आप देख चुके होंगे।
2: ज्यादा से ज्यादा लिखना तो चाहिए लेकिन क्वालिटी मेंटेन करना चाहिए। हम लिख रहे हैं ऐसा ही लिख रहे हैं ऐसा नहीं चलेगा। कुछ कर रहे हैं तो थोड़ा
3: सोच समझ के
2: करना चाहिए,
3: रिसर्च करके।
2: क्वांटिटी जरूरी नहीं है, क्वालिटी जरूरी है, इसलिए मैं करूंगा लेकिन
3: समय लेके। एक ऐसा किताब आपके ख्याल में कुछ है कि मैं ऐसा लिखना चाहूंगा जब मेरा पूरा एकदम जो जीवन है वो जब समाप्त हो जाएगा तो मेरे नाम का माला जपता रहे, मतलब ऐसा कुछ ख्याल है आपके दिमाग में?
2: मेरे दिमाग में कई कहानियों की प्लॉट्स अभी घूम रही है। मैं फिल्मों को भी बहुत पसंद करता हूँ, एक तरह से मैं इधर उधर सोचता रहता हूँ। तो मेरी जो कहानी है अभी प्लॉट तो घूम रही है लेकिन ये भी समय लेके आ जाएंगे।
1: पुंछी की आवाज नुंगाई में कुप गया था पामजरुब इशे सिंह कनागुम्बा सिंह दी मरुप उइदुना मिकुप खरदंग उइरबसु थमुइबु थिमजिंजरी सैसकपी निंथौजम रीना की कोंजलता के वाहिंग बम सेरिंबा मतमिशे लाखली बजुलाई की तांग कुन मापल की अयुक पुंग तरादा संदुक्षगदबा मतमिशे की खुरुल अमा उइना।

0: दौसाजी
1: बाबू हरे कृष्ण
2: वाला इन हे ओ जाइबीमा
3: आसीमा
2: ngasigidi ꯁꯩꯇꯝꯕꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯁꯥꯏꯗ ꯁꯨꯝ ꯂꯣꯏꯁꯜꯂꯁꯤꯗ
3: ꯂꯣꯏꯁꯜꯂꯁꯤ ꯌꯥꯏꯌꯦ ꯂꯣꯏꯁꯜꯂꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯎꯔꯁꯤ
1: ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯧꯖꯔꯦ ꯏꯃꯥꯏꯕꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯧꯖꯔꯦ
0: ꯍꯔꯦ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅ ꯍꯔꯦ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅ

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, हर सिंगार का प्यारा अंदाज लेकर आज स्टूडियो से एक बार फिर साथ हूं मैं रोहिणी। मेरी दुआ सलाम आप तक पहुंचती है इस प्यारे से ख्याल के साथ कि कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। चांद से इस अंदाज में गुफ्तगु कई बार गीतों के अंदाज में भी की गई है। जी हाँ, ये पहला गीत हमारे प्रोग्राम का जो आप सुनेंगे, आनंद बख्शी साहब ने बड़े ही प्यारे अंदाज में लिखा है दोस्तों। अब्दुल्ला फिल्म से ये गीत है, रफ़ी साहब की प्यारी आवाज़। और आपको बता दूँ, संगीत का जादू है आरडी बर्मन जी का। हर श्रृंगार का आगाज इस प्यारे से गीत के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। साथ रहूँगी मैं रोहिणी।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
2: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
1: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
2: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
1: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
3: 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं हर श्रृंगार। श्रोताओं, हमारी आंखें कभी कभी वो ख्याल भी सजा लेती हैं जिनसे हम महक उठते हैं। फिर बात चाहे रात के टोले में सजे उस चांद की ही क्यों ना हो, वो कहते हैं ना, बेसबब मुस्कुरा रहा है चांद, कोई साजिश छुपा रहा है चांद, जाने किसकी गली से निकला है झेपा झेपा सा आ रहा है चांद। किशोर जी की आवाज से सजाई अगला गीत आप तक पहुंचेगा। आनंद बख्शी साहब ने इस गीत को बोल दिए हैं और RD बवन साहब का बेहद प्यारा दिलकश संगीत का अंदाज। आइए सुने ये गीत।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर,
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

101.1 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं आप सुन रहे हैं हर सिंगार। कई बार होता है कि दिल को ठेस पहुंचाने वाले अल्फाज बड़ा गहरा एहसास देकर जाते हैं और कई बार गहरी यादें भी दे जाते हैं। शायद जिंदगी का अनुभव दिल को कुछ यूं ही रंगता है। दिल को पहले जैसा मासूम नहीं रहने देता, हाँ लेकिन पत्थर भी नहीं होता, मोम भी नहीं रहने देता। दिल की बीबीसी आनंद बख्शी साहब ने बड़े ही प्यारे अंदाज में इस अगले गीत में सुनाई है, या ये कहूँ कि लिखी है, और ये जो अगला गीत है वो है जूली फिल्म से। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा अंदाज। इस गीत को संगीतबद्ध किया है राजेश रोशन जी ने।

बड़े ही प्यारे अल्फाज हैं दोस्तों कि आदितन तुमने कर दिए वादे, आदितन तुमने कर दिए वादे, आदितन हमने भी एतबार किया, तेरी राहों में हर बार रुककर हमने अपना ही इंतजार किया। इंतजार कीजिए एफएम गोल्ड पर आने वाले अगले प्रोग्राम्स का, और मुझे यानी रोहिणी को दीजिए इजाजत आज के हर श्रृंगार को यहीं समेटने की। सुनते रहिए आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल, और ये प्यारा गीत, ये प्यारा अंदाज लता जी और किशोर जी की आवाज में आप तक पहुंच रहा है। इस गीत को अल्फाज दिए हैं गुलशन बाबरा जी ने और संगीत से सजाया है आर डी पावन जी ने। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा अंदाज।

0: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई,
0: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
0: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम,
0: मतलब सबका स्पैम कम होगा।
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
4: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
3: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
6: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
5: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल CJP के प्रवक्ता आशुतोष राका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभा हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। दिल्ली यातायात पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 के अंतर्गत लागू निषेधाज्ञा के मद्देनजर नागरिकों को अधिसूचित क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। इसके साथ ही यातायात पुलिस ने बताया है कि आपातकालीन सेवाएं जिनमें एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवाएं, अधिकृत सरकारी वाहन शामिल हैं, निर्धारित अनुमति के अनुसार संचालित होती रहेंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग UPSC के प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की गई है। NTA ने एक बयान में कहा कि यह उपाय एजेंसी के संस्थागत पुनर्निर्माण की दिशा में पहला ठोस कदम है, जिसे प्रोफेसर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुरूप लागू किया जा रहा है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंतकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा। चीन के हांगझोउ में ISSF विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की संयम ने आज महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। उन्होंने कुल 243.4 का स्कोर बनाकर दूसरा

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आज की कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ ए के भट्टाचार्य। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार।
1: और सबसे पहले सुनते हैं मुख्य समाचार।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसेस एक्सटेंड देयर लूजिंग स्ट्रीक, सेंसेक्स डिक्लाइंस ओवर 300 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स बिलो 23,800, मोस्ट एशियन स्टॉक मार्केट इंडिसेस एंड इन द नेगेटिव टेरिटरी, and cabinet approved the Bhavya Rasayan scheme for establishing 3 dedicated chemical parks in India.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज भी गिरावट का रुख। सेंसेक्स में 300 अंकों से अधिक की सुस्ती आई। निफ्टी 23,800 के स्तर से नीचे पहुंचा। अधिकतर एशियाई शेयर बाजारों में आज गिरावट का रुख। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में 3 विशिष्ट केमिकल पार्क स्थापित करने के लिए भव्य रसायन योजना को स्वीकृति दी।
0: And before we take our main stories in detail, here is a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों ने आज शुरुआती नुकसान की भरपाई की और 0.43% की गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 332 अंक नीचे आकर 76,060 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 102 अंक लुढ़ककर 23,767 पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में मिड कैप सूचकांक 0.1% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.3% नुकसान के साथ बंद हुआ। इससे पहले वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच कारोबार की नकारात्मक शुरुआत देखी गई। बड़े पैमाने पर बिकवाली के कारण सत्र के पहले हिस्से में दोनों प्रमुख सूचकांक दबाव में रहे। हालांकि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा तो निचले स्तरों पर खरीदारी और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण सेंसेक्स और निफ्टी ने दिन के निचले स्तर से काफी रिकवरी की।
0: Benchmark domestic equity indices paired their initial losses and ended 0.43% down today. Sensex dropped 332 points to end at 76,060, while Nifty slipped 102 points to close at 23,767. In the broader market on the NSE, the mid-cap 100 index lost 0.1% and the small-cap 100 index fell by 0.3%. Earlier, the markets opened on a negative note amid heightened global uncertainty. Both the stock market indices traded under pressure during the first half of the session amid broad-based sell-off. However, as the day progressed, the Sensex Nifty recovered sharply from the day's lows, supported by buying at lower levels and drop in crude oil prices.
1: सेंसेक्स में 30 में से 20 कंपनियों को आज नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा गिरावट वाली कंपनियों को देखा जाए तो एटर्नल में 2.3% से ज्यादा, महिंद्रा एंड महिंद्रा में 2.1% और बजाज फाइनेंस में 2.1% की गिरावट आई। वहीं दूसरी तरफ HCL टेक में लगभग 2.1% की बढ़त हुई। ITC में 0.8% की तेजी आई और एक्सिस बैंक में 0.6% की बढ़ोतरी हुई।
0: In the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 19 out of the 26 sectors ended in the negative zone. Among the top laggards, auto dropped 1%, telecommunications slipped 0.9% and power fell nearly 0.7%. In contrast, focused IT advanced 1.3%, IT as well as PSU banks rose over 0.6% and insurance gained more than 0.4%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was positive, as shares of 2,124 companies advanced, 2,053 companies declined and 208 companies remain unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में लगभग स्थिर रहा और 96.56 के स्तर पर बंद हुआ। एकेबी कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार।
1: और इस सप्ताह अगर कारोबार पर हम नजर डालें तो लगभग हर दिन लाल निशान के साथ बंद हुआ और पिछला सप्ताह थोड़ा बेहतर था, लेकिन ये सप्ताह निवेशकों की दृष्टि से अगर देखें तो लाल निशान उन्हें ज्यादा देखना पड़ा। कौन कौन से प्रमुख ऐसे कारण रहे जिनकी वजह से इस तरह की चीजें देखने को मिली?
2: एकदम आपने सही कहा निखिल जी। अगर आप 5 दिन के ट्रेडिंग देखें तो करीबन 2% की गिरावट रही और हर दिन हमने गिरावट देखी और उसका प्रधान कारण यही है कि और ये जो गिरावट जो है ये अगर आप देखें पिछले 4 महीनों में सबसे ज़्यादा साप्ताहिक गिरावट थी
1: जी।
2: और इसका प्रधान कारण ये था कि जो विश्व स्थिति जो है, वैश्विक स्थिति, उसमें जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और भी गंभीर हो चुकी है। जिस तरह से यूएस और ईरान का जो मसला चल रहा है, वो एक समय तो ये लग रहा था कि ये शायद रेजोल्यूशन की तरफ जा रहा है, पर वो और भी वातावरण और भी गंभीर हो जा रहा है, और इसी कारण स्टॉक मार्केट एक तरफ और क्रूड ऑयल प्राइस दूसरी तरफ, दोनों में जो जो एक टेंशन, डर भी कह सकते हैं, उसी के कारण हम जो पिछले 5 सत्र में जो हमने देखी जो गिरावट, यही उसके प्रधान कारण है। कोई अंतर्देशीय कोई कारण इसमें नहीं है, ये पूरी तरह से एक एक एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट के ऊपर निर्भरशील ये डेवलपमेंट है। हालांकि हमने आज जो मार्केट में देखा
1: जी,
2: उसमें एक सिल्वर लाइनिंग नज़र आई, वो ये लगा कि जब मार्केट नीचे आ गई, तब आधे मार्केट में दिन के जो पिछले अंतिम समय में मार्केट इतनी नीचे आ गई कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स वापस आ गए और ख़रीदना शुरू किया। उससे जो मार्केट की जो पहले हाफ में जो जो गिरावट थी, वो उतनी गिरावट से वो बंद नहीं हुई। तो इसका मतलब यही मुझे दिख रहा है कि अगर मार्केट एक पॉइंट के नीचे आ जाए
1: जी,
2: तो जो इन्वेस्टर की जो एपेटाइट जो है वो अभी भी बरकरार है। हालांकि मैं ये नहीं समझता कि ये एक पॉजिटिव रीज़न है, पर ये दर्शाता है कि मार्केट में एक स्टेबल लेवल जो है आज की तारीख में जो मार्केट में जो आया है, वो लगता है कि एक स्टेबल लेवल है। अगर उसके नीचे जाए तो हमें ये शंका होगा कि मार्केट शायद एक और भी एक बेरिश फेज में जा सकती है, पर अगर इसी लेवल में रुका रहे तो अगले समय में, अगले दिनों में अगर इसमें कोई अगर कोई इम्प्रूवमेंट होती है तो शायद आगे की ओर हम देख सकते हैं। पर इस वक्त समय एकदम बहुत ही क्रिटिकल समय है, देखना पड़ेगा कि किस तरह से ग्लोबल मार्केट्स बिहेव करती हैं। यूएस मार्केट पर बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट रहेगा, किस तरह से यूएस फेड की जो नीति जो है उसमें सब कुछ लग रहा है कि शायद इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए इस बार सितंबर की जो आएगी, उससे पहले भी एक और एक नीति आएगी उसमें भी शायद कुछ बढ़ जाए। उससे जो जो डोमेस्टिक मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट का जो और जो मार्केट की जो जो फ्लो ऑफ मनी है वो शायद और भी कम हो जाए।
0: एकेबी फॉर द वीक ओनली एफएमसीजी एंड ऑटो एक्चुअली हैड गेन्स। एफएमसीजी रोज 0.5% एंड ऑटो बाय 0.4%, इवन द ऑटो टुडे ड्रॉप बाय 1%। सो वी आर सीइंग a trend that is being followed. The US markets have also seen a devaluation in yesterday's proceedings in the market itself. How do you see the coming week? Because the US tariff policy is also something that will influence valuation of sectors and stocks, and the US-Iran war is not seeing any abatement. In fact, it has only gone up. Oil prices, even though they fell today marginally, do you see them go up next week? And how do you see next week's market, bearing in mind all these geopolitical factors and the US tariff policy, which is not just 10%, but can also be 25 to 50% across other sectors?
2: Well, I think what you said, the FMCG and the second sector, auto, that is the auto, there are specific sectoral factors at play. Auto is heavily influenced by what is happening on the use of the ethanol-based fuel. So there is a bit of uncertainty. Sales may have been impacted. So the auto industry stocks are reflecting that uncertainty and nervousness. The FMCG sector has become weak because there is a certain softness seen in the rural demand. The rural economy may not do as well as earlier it was thought to be because of the El Nino effect and the rains being so erratic. So it's likely that the rural economy, its income surplus or the earnings will be depressed, which will impact the FMCG sector, which are heavily influenced by the rural economy's demand. So both these sectors that you mentioned are reflective of sectoral developments. On the question, a far more fundamental question that you raised about how will the stock market will respond to the coming week of developments, I would say that a big factor would be that if there is any breakthrough that one can see in the kind of discussions or talks or any deterioration in the relationship between US and Iran, that will be a very, very important factor. Another factor would be that what are the signals that we get from the Fed on what kind of policy that it will adopt. Will it become more restrictive? Now, if it gets more restrictive, then surely the Indian markets will also be impacted. So one, the West Asian market, the situation. Two, the stance, more clarity on the stance of the US Fed. And three, a counterpoint is that so far Indian companies have done very well in terms of results. Now, if you look at the 260-odd common sample of companies which have declared their results, their sales have grown by over 20%. And even their profit, which is adjusted against extraordinary income the previous year, it is also over 22%. So both profit-wise as well as sales-wise, they have done well so far. Of course, the laggard companies, the results will come a little later. Those who are doing better, they come out with the results first. But even then, I would say this could be a positive counterbalancing factor to the developments on the stock market for the coming week.
0: We saw that in the fourth quarter. We're seeing that in the first quarter regarding the earnings results. Quite interesting that you brought about those metrics for the benefit of our listeners on Akashvani. Even the margin has actually gone up if we not just take into account net profit and revenue yep. and sales performance. Banking results have also been declared. Non-performing assets are also coming down marginally. But the news that I want to bring to your mind is information technology. They have seen a fall in valuation before they saw a rise in valuation today. To what extent do you see the US dollar index, which is at 101.43, actually influencing short covering in this sector, the IT sector?
2: Well, to a great extent, the IT sector is influenced by what is happening in the technology space, which is the AI, the artificial intelligence space. Most of India's tech companies are battling that demon, if I may use that expression. Yes, the dollar index does play a role, but I think the bigger factor is how AI will impact its margins. One associated point that you raised about the banks and the financial sector, they have done well, but they are not doing well in the stock market. It's a very, very interesting phenomenon that we are witnessing, and that is the reason. The reason is probably that going forward, and the stock market is not a lagging indicator, is a forward-looking indicator. Going forward, the banking sector might see its margins under squeeze. So today's stock market, if you look at the banking sector stocks, they have haven't done well at all compared to the results that they came out with last week. And the reason is that their margins are likely to come under squeeze, and which is why the stock market is not giving them a thumbs up, rather they're giving them a thumbs down.
1: AKB, अगर स्मॉल को भी मिड कैप की हम बात करते हैं तो आजकल मुनाफा वसूली कुछ ज़्यादा ही दिखाई देने लगी है, तो इसके पीछे क्या है? ये रीज़न है कि लोग अब

0: जोखिम लेने की बजाय सेफ ट्रेडिंग करना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, जिसमें लार्ज कैप में पैसा ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, या कुछ और कारण?
1: नो, आपने एकदम सही फरमाया कि जो जो मिड कैप इंडेक्स है, स्मॉल कैप इंडेक्स है, पहले तो स्मॉल कैप इंडेक्स से जो एक्टिविटी है बहुत कम हो गई है, और मिड कैप इंडेक्स में थोड़ी बहुत रिकवरी हमने देखी पिछले 4 महीने में, और पर इस हफ्ते में हमने मिड कैप्स में भी काफ़ी प्रेशर में वो स्टॉक्स रहे, और उसका कारण आपने एकदम ठीक कहा कि लोग सेफ्टी की तरफ जा रहे हैं, लार्ज कैप स्टॉक्स में ज़्यादा अपना अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे हैं, और तीसरी कारण जो मैंने अर्जुन जी को भी नहीं मैं बता सका, तीसरा कारण ये है कि बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है, क्योंकि बहुत सारे IPOs की लाइनअप है और बड़े बड़े IPOs आने वाले हैं, और जो स्टॉक मार्केट के जो रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो इस वक्त क्या करते हैं कि वो जब भी वो स्टॉक मार्केट में मौका देखते हैं वो प्रॉफिट बुक करके वो अपने आप को पोजीशन में लाते हैं, जिस तरह से वो किस तरह से नए IPO में इन्वेस्ट करके उन IPO में से और भी पैसा निकाल सके, तो उसके कारण भी स्टॉक मार्केट ने जो नरमी देखी हमने उसका एक कारण है।
0: आगे बढ़ते हैं, अधिकतर एशियाई शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुए क्योंकि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण निवेशकों ने जोखिम नहीं उठाया। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 5.7% गिरा, जापान का निक्केई 2.7% से ज्यादा टूट गया, ताइवान का ताइएक्स लगभग 2.7% नीचे आ गया, चीन का शंघाई कंपोजिट 1.6% लुढ़क गया, और हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 1% के नुकसान में रहा। वहीं दूसरी ओर सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.1% लाभ में रहा। आर्थिक मोर्चे पर जापान का कोर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जून में सालाना आधार पर 1.6% हो गया, जो मई में 1.4% था। यह बढ़ोतरी मार्च के बाद कोर महंगाई दर में पहली तेजी थी। जापान के स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो के डेटा के अनुसार प्रमुख महंगाई दर भी जून में सालाना आधार पर 1.7% थी, कि मई में ये 1.5% थी। एकेबी कल अधिकतर एशियाई शेयर बाजारों में सकारात्मक रुख था, आज अचानक से नकारात्मक रुख देखने को मिला।
1: सही कहा आपने, एक टेक अवे जो है वो है जापान की जो जो प्राइस इंडेक्स की जो डेवलपमेंट, वो बहुत ही एक सिग्निफिकेंट इंडिकेटर है स्टॉक मार्केट के लिए भी। हालांकि निकी गिर गया है मार्केट में, पर उसकी जो प्राइस इंडेक्स, वो जापान में दाम बढ़ना एक बहुत बड़ी एक एक घटना है, क्योंकि जापान में इन्फ्लेशन का नामो निशान नहीं है बहुत दिन से। अगर इन्फ्लेशन आता है तो हालांकि आम जनता को क्षति पहुंचती है, टेंशन होता है हम लोगों को, पर जो इन्वेस्टर जो है, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर जो है, सर्विसेज सेक्टर के जो इन्वेस्टर हैं, उनको एक प्रॉफिट की एक एक एक एक डायरेक्शन मिलती है, प्रॉफिट अर्निंग की एक इंडिकेशन होती है। और मैं ये समझता हूँ कि ये इन्फ्लेशन जो 1.6% की जो इन्फ्लेशन जो बढ़कर 1.4% से आ गई है, ये भी दर्शाता है कि जापान में डिमांड की विजिबिलिटी आई है, और ये मैं समझता हूँ जापान विश्व की एक बहुत बड़ी अर्थनीति है, उसके लिए ये एक सकारात्मक डेवलपमेंट में कहूँगा। हालांकि स्टॉक मार्केट ने आज इसका ठीक तरह से वेलकम नहीं किया।
2: इन मोर न्यूज, द US has imposed a 10% tariff on imports from India and 16 other countries over concern about the use of forced labor in supply chains. US Trade Representative USTR Jameson Greer said the new tariffs ordered by President Donald Trump target 60 countries under Section 301 of the Trade Act for failing to effectively ban imports made with forced labor. The tariff replaces temporary 10% worldwide levies that expired yesterday after the US Supreme Court struck down Trump's earlier reciprocal tariffs. So what's your take on this? Because now we have an idea of the baseline tariff and what is being imposed as well based on this Section 301 of the Trade Act. What would be the next step? Because there seem to be a variation across sectors.
1: Well, I think this is a limited positive news for India. Limited because we still don't know what awaits the Indian economy in terms of the US-India Trade Pact negotiations that are still going on. But it's positive because we are earlier slapped with a notice of 12.5%.

0: we are being bracketed along with 60 other countries at 10%. In terms of the impact on India's exports, it will be less than what was earlier feared. Please remember that this was possible because the government came out with a DGFT notification that said that India will also levy taxes on imports from countries that use forced labor. Now, India had not done it earlier. Now, this was done to essentially assuage and ensure and convince the U.S. That India is also very, very concerned about forced labor, and that is what is happening right now.
1: परशुदा आपको बता दें आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आज देश में तीन विशिष्ट केमिकल पार्क बनाने के लिए भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन जिसे हम भव्य रसायन योजना भी कह सकते हैं उसको स्वीकृति दे दी है। इस योजना की घोषणा 2026-27 के केंद्रीय बजट में की गई थी। इस योजना का कार्यकाल फिलहाल 5 साल के लिए रखा गया है। केंद्र सरकार हर पार्क के लिए 1,000 करोड़ रुपए तक की सहायता देगी जबकि संबंधित राज्य सरकार को कम से कम 500 करोड़ रुपए का योगदान देना होगा। इस योजना का भारत के लिए कितना महत्व होगा खासतौर पर ऐसे समय में जब हम काफी चीजें विदेशों से आयात करते हैं।
0: देखिए हमारी जो आत्मनिर्भरता का जो एक प्रोजेक्ट है उसी का ये मैं एक समझता हूँ कि एक उसका एक ही एक कड़ी है ये और ये केमिकल प्रोजेक्ट्स जो हैं मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है और केमिकल फर्टिलाइजर्स भी इसके अंदर शायद अंतर्गत होगा
1: जी।
0: और इससे जो हमारी जो आयात के ऊपर निर्भरशीलता जो है उसमें कमी होगी और वो हमारे लिए देश के लिए अर्थनीति के लिए एक सुविधाजनक बात है।
2: In more news, India's foreign exchange reserves rose by $1.08 billion to over $676 billion for the week ended 17th of July. According to the data released by the RBI, foreign currency assets, the largest component of the reserves, increased over $4.5 billion to over $551 billion. The RBI said gold reserves declined by $3.48 billion to over $101 billion. President Draupadi Murmu had said regarding India and Romania, after delegation-level talks with a Romanian counterpart, Nicuso Dan, President Murmu said, India and Romania have set a target of doubling bilateral trade over the next 3 years.
3: India-EU free trade agreement is an important milestone in India-EU strategic partnership. Trade and economic cooperation are central to the contemporary partnership. With a combined market of nearly 2 billion people and an economic zone of around $25 trillion, the India-EU FTA is among the most significant economic partnerships in the world.
2: Moving on to the crude oil market, global crude oil prices retreated today after surging earlier in the session. Brent crude was trading 3.1% down at $97.58 per barrel in intraday trade. Earlier, Brent crude rose above $100 a barrel for the first time since May amid concerns over global energy supplies stemming from West Asia conflict. Meanwhile, West Texas Intermediate crude was trading over 2.6% down at $89.74 per barrel when reports last came in. And now moving on to the bullion market. In the Indian bullion market, 24 karat gold was trading 0.1% up at 1,43,670 rupees per 10 grams, while silver was trading over 1.2% up at 2,22,490 rupees per kilogram a short while ago.
1: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाला सोना मामूली बढ़त के साथ 1,42,909 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था जबकि सितंबर अनुबंध वाली चांदी 1.1% ऊपर आकर 2,21,901 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। एकेबी गोल्ड और सिल्वर पर आपके क्या कमेंट्स होंगे?
0: देखिए गोल्ड एंड सिल्वर जब मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है थोड़ी बहुत उनमें लोगों की रुचि भी बढ़ जाती है। हालांकि वो रुचि थोड़ी कम हो गई थी पिछले कई दिनों पर जब स्टॉक मार्केट में जो थोड़ी बहुत हलचल मस्ती है थोड़ी बहुत बिकवाली होती है उससे मार्केट में नीचे आता है दबाव में आता है मार्केट तब गोल्ड एंड सिल्वर की डिमांड भी ज़्यादा एक वृद्धि होती है और वही आज की गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस में दिख रहा है
1: जी। एक भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार धन्यवाद।
2: And before we close, a reminder of the headlines, benchmark domestic stock market indices.

0: extend the losing streak. Sensex declines over 300 points. Nifty settles below 23,800. Most Asian stock market indices end in the negative territory. And the cabinet approves a Bhavya Rasayan scheme for establishing three dedicated chemical parks in India. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye.
1: Namaskar.
2: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

101.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल आप सुन रहे हैं। श्रोताओं, प्रोग्राम आपका पसंदीदा लेकर एक बार फिर आपसे जुड़ रही हूं रोहिणी। जी हां, प्रोग्राम गीत मेरे मन में, सदाबहार गीतों की बहार तो इसमें आप तक पहुंचाऊंगी ही, साथ ही बड़े प्यारे ख्याल भी आपसे साझा करूंगी। कहते हैं जो कभी न भर पाए ऐसा भी एक घाव होता है और उसका नाम लगाव होता है। कहते हैं ना कि दिल की अधूरी बातें भी खूब होती हैं जिनमें यादें पूरी डूबी होती हैं। गुलजार की शायरी सी लगती है ये जिंदगी जहां खामोशियां भी खूब बोलती हैं। जी हां, 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर सदाबहार गीतों का ये अंदाज आप तक पहुंच रहा है। आज के गीत मेरे मनमीत का आगाज करते हैं इस प्यारी सी आवाज में, जो कि लता जी की प्यारी आवाज से सजा गीत है। और आपको बता दूं कि प्रेम पर्वत फिल्म का ये गीत आप सुनेंगे, जानेसार अख्तर साहब ने इस गीत को अल्फाज दिए हैं और जयदेव साहब का मधुरमयी प्यारा संगीत।

गीत मेरे मनमीत का ये अंदाज आप तक पहुंच रहा है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कहते हैं जिंदगी यूं ही बेकरार है, कभी खुशी तो कभी इंतजार है। ये इंतजार खत्म करते हैं और आप तक अगला गीत पहुंचाते हैं। मौसम फिल्म से ये गीत है लता जी और भूपेंद्र जी की आवाज में। इस गीत को गुलजार साहब ने गुलजार किया है और जी हाँ, संगीत दिया है मदन मोहन जी ने। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा अंदाज।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन

कहते हैं भूली बिसरी यादें जब आती हैं, वक्त ठहर जाता है, जिंदगी मुस्कुराती है। चलिए अगर ऐसा है तो उम्मीद यही करते हैं कि जिंदगी को मुस्कुराने दीजिए। 100.1 MHz पर आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल आप सुनते रहिए। इस गीत के साथ फिलहाल मुझे यानी रोहिणी को दीजिए इजाजत। 100.1 MHz पर गीत मेरे मन मीत को यहीं समेटती हूँ। शुभरात्रि।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष राका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल लगातार नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। दिल्ली यातायात पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 के अंतर्गत लागू निषेधाज्ञा के मद्देनजर नागरिकों को अधिसूचित क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। इसके साथ ही यातायात पुलिस ने बताया है कि आपातकालीन सेवाएं जिनमें एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवाएं, अधिकृत अधिकारी सरकारी वाहन शामिल हैं, निर्धारित अनुमति के अनुसार संचालित होती रहेंगी। विदेश मंत्रालय ने सूचित किया है कि इस महीने की 18 तारीख को काला सागर में रूसी जल क्षेत्र में वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोरोफी पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई। मंत्रालय ने बयान में बताया कि घटना के समय पोत पर 3 भारतीय नागरिकों सहित चालक दल के 10 सदस्य सवार थे। पोत पर सवार अन्य 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। रूस स्थित भारतीय दूतावास ने संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया है और पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता प्रदान करने का प्रयास कर रहा है। भारत और इसराइल ने प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते एफटीए के लिए वार्ता का दूसरा दौर सफलतापूर्वक संपन्न किया। 20 से 23 जुलाई तक नई दिल्ली में चली वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने प्रस्तावित समझौते के सभी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की और एक संतुलित, व्यापक और पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते की दिशा में प्रगति जारी रखी। अमरीका ने चीन, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन सहित 60 व्यापारिक साझेदारों से आयात पर 12.5% तक का नया टैरिफ लगाया है। लगभग सभी अमरीकी आयातों पर लागू यह टैरिफ कल समाप्त हुए इसी तरह के शुल्क की जगह लेंगे। अमेरिका ने कहा है कि इससे उन देशों को निशाना बनाना है जो जबरन श्रम से निपटने में विफल रहे हैं। चीन के हांगझोंग में ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। प्रोग्राम है निशिगंधा और मैं हूँ सुरभि आपके साथ। रात के ख्वाब सुनाएं किसको, रात के ख्वाब सुहाने थे। रात के ख्वाब सुनाएं किसको, रात के ख्वाब सुहाने थे। धुंधले धुंधले चेहरे थे पर सब जाने पहचाने थे। जिद्दी वहशी अल्हड़ चंचल मीठे लोग रसीले लोग। होठ उनके गजलों के मिसरे आंखों में अफसाने थे। रात के ख्वाब सुनाएं किसको, रात के ख्वाब सुहाने थे। तो भाई जब रात गहराती है तो दिल की आवाज़ें बहुत साफ सुनाई देने लगती हैं। चांद खामोशी से मुस्कुराता है, तारे अनकही बातें कहते हैं और हवाएं यादों की खुशबू साथ ले आती हैं। एक ऐसी ही खूबसूरत रात में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ। जी हां, अगले कुछ लम्हों तक हम और आप रहेंगे साथ प्यार एहसास और दिल को छू लेने वाले गीतों के साथ। चलिए आगाज करते हैं रफी साहब की आवाज में जंगली फिल्म के इस गाने के साथ।

शाम गम की सहर नहीं होती, शाम गम की सहर नहीं होती, या हमी को खबर नहीं होती। चांद है कहकशा हैं तारे हैं, चांद है कहकशा हैं तारे हैं, आह यूं बेअसर नहीं होती। दोस्तों इश्क है खता, लेकिन क्या खता दरगुजर नहीं होती। रात आकर गुजर भी जाती है, रात आकर गुजर भी जाती है, एक हमारी सहर नहीं होती। तो भाई सहर भी होती है, खबर भी होती है, और इश्क भी हो जाता है। तो चलिए अगला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं, फिल्म है नया दौर, आशा भोसले और शमशाद बेगम और साथियों की आवाज़ में।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

निशिगंधा आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। कभी कभी दिल जानता है कि उसे ठहर जाना चाहिए, फिर कभी किसी की एक मुस्कान, एक झलक सारी कोशिशें बेअसर कर देती हैं। हमने भी कई बार अपने जज्बातों को रोकना चाहा, खुद को समझाया कि अरे रुक जाओ, ये बस एक एहसास है। लेकिन हकीकत तो यही है कि जब दिल को और निगाहों को कोई पसंद आ जाए तो फिर ये दिल कहाँ किसी की सुनता है। चांदनी रात हो या फिर तन्हाई हो, वही चेहरा बार बार याद आता है और लगता है जैसे मोहब्बत ने खामोशी से अपनी जगह बना ली है। तो आइए चलिए सुनते हैं एक ऐसा ही दिलकश नगमा, फिल्म है मेरे सनम, रफ़ी साहब और आशा भोसले की आवाज़ में।

कुछ दूर हमारे साथ चलो, हम दिल की कहानी कह देंगे। कुछ दूर हमारे साथ चलो, हम दिल की कहानी कह देंगे। समझे न जिसे तुम आंखों से, वो बात जबानी कह देंगे। जब प्यास जवा हो जाएगी, एहसास की मंजिल पाएगी, खामोश रहेंगे और तुम्हें हम अपनी कहानी कह देंगे। कुछ दूर हमारे साथ चलो, हम दिल की कहानी कह देंगे।

कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार देखो, दो बार देखो या बार बार देखो, ये मन भरता ही नहीं है। नज़र बार बार वहीं ठहर जाती है, जैसे चांद को देखकर हर रात नई सी लगती हो। शायद मोहब्बत की शुरुआत भी ऐसे ही होती है, जब किसी को देखने की वजह ढूंढनी नहीं पड़ती, बस उसे देखते रहने का मन बस करता ही रहता है बार बार बार बार। तो इस हसीन रात में चलिए दिल के इन्हीं मासूम एहसास को हम और आप सुनते हैं गीत के माध्यम से।

जी आप सुन रहे हैं प्रोग्राम निशी गंधा और मैं हूं आपके साथ सुरभि। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़।

और इसी गीत के साथ निशिगंधा में हमारा आपका सफर यहीं तक, हमारी मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी CJP प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल CJP के प्रवक्ता आशुतोष नाका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से इनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल लगातार नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। दिल्ली पुलिस ने परीक्षा संबंधी कागजी कार्यवाही में गड़बड़ी और अन्य अपराध की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल STF का गठन किया है। ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि ये कार्यबल विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा आयोजित लोक परीक्षाओं से संबंधित अपराधों की त्वरित पेशेवर और व्यापक जांच करने के लिए जिम्मेदार होगा। दिल्ली यातायात पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 के अंतर्गत लागू निषेधाज्ञा के मद्देनजर नागरिकों को अधिसूचित क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। रोमानिया के बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनकी विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता और भारत रोमानिया संबंधों की मजबूत करने में उनके योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने शिक्षा को अपने जीवन की सबसे परिवर्तनकारी शक्ति बताया। अपने गांव की पहली लड़की के रूप में कॉलेज जाने से लेकर भारत की राष्ट्रपति बनने तक के अपने सफर को याद करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा समावेशी समाज का सबसे मजबूत आधार है। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का पहला पदक सुनिश्चित हो गया है। भारत की 28 वर्षीय लवलीना बोरगोहिन को बाई मिलने के बाद महिला 75 किलोग्राम मुक्केबाजी के सेमीफाइनल में उन्होंने प्रवेश कर लिया है। फाइनल में लवलीना का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की दो बार के विश्व चैंपियन कांस्य पदक विजेता एम्मा सू ग्रीनट्री से हो सकता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। प्रोग्राम है गीत सुहाने। मैं हूं आपके साथ सुरभि। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ऐ जिंदगी हम तुमसे मुलाकात

मुलाकात करेंगे। ऐ जिंदगी हम तुमसे मुलाकात करेंगे, जो बात दिल में है वही हम बात करेंगे। तुम सोच के रखना दोगी जवाब क्या, जब हम सवालात की बरसात करेंगे। ऐ जिंदगी हम तुमसे मुलाकात करेंगे, जो बात दिल में है वही हम बात करेंगे।

कहते हैं मोहब्बत की सबसे खूबसूरत जबान आंखें होती हैं, कुछ निगाहें बिना एक भी लफ्ज कहे दिल की हर बात पढ़ लेती हैं। चांदनी रात में जब किसी की चंचल आंखें याद आ जाएं तो तारे भी जैसे मुस्कुराने लगते हैं। उन आंखों की मासूम शरारत और अपनापन दिल पर एक ऐसा असर छोड़ जाता है कि फिर हर नज़र में, हर निगाह में बस वही चेहरा दिखाई देने लगता है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे

गीत सुहाने आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। कहते हैं कि मोहब्बत नसीब वालों को ही मिलती है, जिसके साथ कोई अपना हो उसके लिए हर रात चांदनी बन जाती है और हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है। दुनिया की सारी दौलत भी उसे एक सच्चे इंसान के आगे छोटी लगने लगती है, जो हर खुशी और हर दुख में, हर खामोशी में आपका हाथ थामे रहता है। शायद इसीलिए तो कहा है कि दुनिया उसी की होती है जिसके दिल में प्यार हो और मोहब्बत समाई हो। तो चलिए अगला गीत सुनते हैं इसी खूबसूरत एहसास के साथ।

रात की खामोशी में कभी कभी किसी की आंखें याद आ जाती हैं, ऐसी आंखें जिसमें शरारत भी हो, अपनापन भी और एक अनकहा जादू भी। उनकी एक नज़र दिल की धड़कनों को बदल देती है, जैसे चांदनी अचानक और उजली हो गई हो। शायद इसी एहसास को मोहब्बत कहते हैं। जब किसी की आंखों में पूरी दुनिया नजर आने लगे, तो इस हसीन रात, चांद, तारों और दिल के जज्बात को हम समेटते हुए चलते हैं और आपको सुनवाते हैं एक दिलकश नगमा।

कुछ रिश्ते धीरे धीरे दिल में जगह बनाते हैं और फिर एक दिन एहसास होता है कि ये दिल अब सिर्फ अपनी धड़कनों का नहीं रहा। चांदनी रात में जब किसी की याद मुस्कान बनकर होठों पर ठहर जाए तो लगता है जैसे जिंदगी ने अपना सबसे खूबसूरत तोहफा दे दिया। मोहब्बत शायद यही है, जब दिल अपनी हर धड़कन किसी एक के नाम और उसके नाम के हवाले कर देता है।

और देखिए गीत सुहाने प्रोग्राम में चलते चलते हम अपने अंजाम की तरफ आ चुके हैं और चलते चलते सुनवाएंगे आपको एक और बहुत ही खूबसूरत सा गीत। फिल्म है फागुन और रफ़ी साहब और आशा भोसले की आवाज़ है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम जिंदगी की बात करें, मोहब्बत की बात करें, तो मोहब्बत ज़िंदगी में कभी दस्तक देकर नहीं आती। बस एक मुलाकात होती है, एक मुस्कान एक दूसरे के साथ शेयर हो जाती है और दिल चुपके से किसी और का हो जाता है। फिर चाहे वो शख्स अपना शहर छोड़ दे या फिर दूर चला जाए, उसकी यादें चांदनी की तरह हर रात साथ रहती हैं। कुछ लोग ज़िंदगी में बस कुछ पल के लिए आते हैं, लेकिन उन पलों की खुशबू उम्र भर दिल में महकती रहती है। तो चलिए इस महकती रात, चांद और तारों की गवाही में सुनते हैं ये सदाबहार नगमा।

मेरे लिए तू खुद को यूं खुद से जुदा न कर, अच्छा तो यही है कि तू मुझसे मिला न कर। जितना भी हो सके तू कर लोगों की भलाई, अपनी तरफ से तू किसी का भी बुरा न कर। और इन्हीं पंक्तियों के साथ गीत सुहाने का ये सफ़र यहीं तक। हमारी आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर रात सुरमई में, और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेज़ी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है

0: इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठकंडे अपनाना ठीक नहीं होगा।
1: अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
2: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल लगातार नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। दिल्ली पुलिस ने परीक्षा संबंधी कागजी कार्यवाही में गड़बड़ी और अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल एसटीएफ का गठन किया है। ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा है कि ये कार्यबल विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा आयोजित लोक परीक्षाओं से संबंधित अपराधों की त्वरित पेशेवर और व्यापक जाँच करने के लिए जिम्मेदार होगा। रोमानिया के बुखारेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनकी विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता और भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। भारत और तंजानिया ने आपसी हित के विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की है। इनमें व्यापार एवं निवेश, विकास साझेदारी, रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, कृषि, स्वास्थ्य सेवा और संस्कृति जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों देशों के बीच विदेश कार्यालय परामर्श बैठक इस माह की 22 तारीख को दार अस सलाम में आयोजित की गई। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का पहला पदक सुनिश्चित हो गया है। भारत की 28 वर्षीय लवलीना बोर गोहिन को बाई मिलने के बाद महिला 75 किलोग्राम मुक्केबाजी के सेमीफाइनल में उन्होंने प्रवेश कर लिया है। फाइनल में लवलीना का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की दो बार के विश्व चैंपियन कांस्य पदक विजेता एम्मा सू ग्रीनट्री से हो सकता है। हॉकी में भारतीय जूनियर श्रेणी के खिलाड़ियों ने मस्कत ओमान में आयोजित FIH युवा हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में पाकिस्तान को 7-3 से और मेजबान ओमान को 10-1 से हराया। वहीं भारतीय जूनियर श्रेणी की लड़कियों ने एलीट पूल में अपने मैच में चीन के खिलाफ कड़ा मुकाबला किया लेकिन 3-6 से हार गईं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। The Union Cabinet approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashwani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. In a video message on Thursday, Prime Minister Modi had announced about bringing a bill with provisions of strong action in cases of paper leaks. Meanwhile, in a major bid to bring out serious examination reforms, the National Testing Agency has terminated 47 officials from service. According to sources, legal and criminal actions will also be taken against some of these officials. The NTA has also issued advertisements for a set of senior professional appointments at the level of general manager and engagement of 16 young professionals through the Pratibha Setu portal of the Union Public Service Commission. NTA in a statement said that these measures represent the first concrete step in the institutional rebuild of the agency.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। प्रोग्राम है रात सुरमई और मैं हूं सुरभि आपके साथ। नमस्कार दोस्तों, अगर जिंदगी में हम किसी के लिए चांद नहीं बन सकते तो किसी की सुरमई रात की चांदनी बन जाइए, क्योंकि रोशनी वही नहीं है जो सबसे ज्यादा चमके, बल्कि वो है जो किसी के अंधेरे को कम कर दे।

0: कुछ मौसम सिर्फ बदलते नहीं, दिलों में उतर जाते हैं। ठंडी हवा का झोंका, चांदनी की नरम रोशनी और किसी खास की अपने की याद, बस इतना ही काफ़ी है दिल को मुस्कुराहट से भर देने के लिए। शायद यही मौसम का जादू है जो हर धड़कन में मोहब्बत के रंग भर देता है।
1: टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन लेट्स

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

रात सुरमई प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। कहते हैं कि मोहब्बत हो जाए तो पूरी कायनात अपनेपन से भर जाती है, और फिर ये धरती जमीन आसमान पहले से ज़्यादा हसीन लगने लगते हैं। चांद थोड़ा और करीब और सितारे जैसे हर दुआ के गवाह बन जाते हैं। इंतज़ार भी तब शिकायत नहीं रहती, बल्कि उस मुलाकात की उम्मीद बन जाती है, जहां दो दिल बिना कुछ कहे एक दूसरे का हाथ थाम ले। तो अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसा कोई साथी है या ऐसा कोई इंसान है जिसके साथ आप पूरी दुनिया और उसके साथ पाकर आप दुनिया से बढ़कर मानते हैं, तो ये खूबसूरत नगमा जो अब हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये उसी प्यार के नाम।

राज सुरमई आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। रात जितनी खामोश होती है, दिल की आवाज उतनी ही साफ सुनाई देती है। कुछ मोहब्बतें साथ नहीं छोड़ती, चाहे फासले कितने भी बढ़ जाएं। चांद हर रात आसमान में लौट आता है, लेकिन कुछ लोग सिर्फ यादों में ही मिलते हैं। तब दिल खामोशी से अपनी बात कहता है और तन्हाई का हाल सुनाता है कुछ इस तरह।

दर मंजिले, फासले दर फासले, रास्ते दर रास्ते, हाथ से दर हाथ से, चलते चलते रुक गया हूँ मैं भी इस उम्मीद पे, लोग जो बिछड़े हुए हैं मुझसे शायद आ मिले। तो इसी के साथ रात सुरमई का ये सफ़र यहीं तक। सुरभि को दीजिए इजाज़त, हमारी मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेज़ी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल लगातार नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। दिल्ली यातायात पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 के अंतर्गत लागू निषेधाज्ञा के मद्देनजर नागरिकों को अधिसूचित क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अनुमति सलाह दी है। इसके साथ ही यातायात पुलिस ने बताया है कि आपातकालीन सेवाएं जिनमें एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवाएं, अधिकृत सरकारी वाहन शामिल हैं, निर्धारित अनुमति के अनुसार संचालित होती रहेंगी। भारत और इजराइल ने प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते एफटीए के लिए वार्ता का दूसरा दौर सफलतापूर्वक संपन्न किया। 20 से 23 जुलाई तक नई दिल्ली में चली वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने प्रस्तावित समझौते के सभी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की और एक संतुलित, व्यापक और पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते की दिशा में प्रगति जारी रखी। विदेश मंत्रालय ने सूचित किया है कि इस महीने की 18 तारीख को काला सागर में रूसी जल क्षेत्र में वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोराफी पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई। मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि घटना के समय पोत पर 3 भारतीय नागरिकों सहित चालक दल के 10 सदस्य सवार थे। पोत पर सवार अन्य 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। रूस स्थित भारतीय दूतावास ने संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया है और पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता प्रदान करने का प्रयास कर रहा है। हॉकी में भारतीय जूनियर श्रेणी के लड़कों ने मस्कत ओमान में आयोजित FIH युवा हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में पाकिस्तान को 7-3 से और मेजबान ओमान को 10-1 से हराया। वहीं भारतीय जूनियर श्रेणी की लड़कियों ने एलीट पूल के अपने मैच में चीन के खिलाफ कड़ा मुकाबला किया, लेकिन 3-6 से हार गईं। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. The Union Cabinet approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashvani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. In a video message on Thursday, Prime Minister Modi had announced about bringing a bill with provisions of strong action in cases of paper leaks. Meanwhile, in a major bid to bring out serious examination reforms, the National Testing Agency has terminated 47 officials from service. According to sources, legal and criminal actions will also be taken against some of these officials. The NTA also issued advertisements for a set of senior professional appointments at the level of general manager and engagement of 16 young professionals through the Pratibha Setu portal of the Union Public Service Commission. NTA in a statement said that these measures represent the first concrete step in the institutional rebuild of the legacy that is being implemented in line with the recommendation of the high-level committee of experts chaired by Professor K. Radhakrishnan. Prime Minister Narendra Modi has thanked country's youth for a response and suggestions following his video. In a social media post, Mr. Modi expressed gratitude to the youth for their overwhelming support. The video has crossed more than 303 million views. It is the most viewed reel within its first 24 hours. Union Ministers J.P. Nadda

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और समय हो गया है प्रोग्राम हमराही का। मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती और शुरुआत करते हैं प्रोग्राम हमराही की इस प्यारे से गीत के साथ।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रोग्राम है हम राही। किसी अपने का हाल पूछना केवल एक सवाल नहीं, बल्कि दिल से निभाई जाने वाली सबसे प्यारी परवाह है।

कभी एक नजर ही दिल की धड़कनों का नया सुर दे देती है। यही तो मोहब्बत का सबसे खूबसूरत अंदाज है।

और इस समय कह रहे हैं कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए। जाने से पहले बस यही कहूंगी कि आप कहीं मत जाइएगा। जी हाँ, 4:10 पर फिर से हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम अरुणिमा। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति, छोड़कर जा रही हूँ एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। गीत को अपनी आवाज में से सजाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने। तो मैं आपसे लेती हूँ अनुमति, नमस्कार। और गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल लगातार नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। दिल्ली पुलिस ने परीक्षा संबंधी कागजी कार्रवाई में गड़बड़ी और अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल एसटीएफ का गठन किया है। यह कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा है कि यह कार्यबल विभिन्न प्राधिकरणों

0: द्वारा आयोजित लोक परीक्षाओं से संबंधित अपराधों की त्वरित, पेशेवर और व्यापक जांच करने के लिए जिम्मेदार होगा। दिल्ली यातायात पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 के अंतर्गत लागू निषेधाज्ञा के मद्देनजर नागरिकों को अधिसूचित क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। इसके साथ ही यातायात पुलिस ने बताया है कि आपातकालीन सेवाएं, जिनमें एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवाएं, अधिकृत सरकारी वाहन शामिल हैं, निर्धारित अनुमति के अनुसार संचालित होती रहेंगी। रोमानिया के बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनकी विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता और भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मोजाम्बिक ध्वज वाले एलपीजी टैंकर दिशा पर ईरानी जल क्षेत्र में हुए हमले के बाद जहाज पर सवार सभी 28 भारतीय चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। एक आधिकारिक बयान में दूतावास ने एलपीजी टैंकर से जुड़ी घटना की पुष्टि की और कहा कि चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वह स्थानीय अधिकारियों के साथ सक्रिय संपर्क में हैं। भारत के झंडू कुमार ने राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों के हैवीवेट पैरा पावर लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता। इस प्रतियोगिता में देश का ये पहला पदक है। झंडू कुमार ने 181 और 190 किलोग्राम भार वर्ग में सफलतापूर्वक उठाकर 130.9 अंक हासिल किए, पोडियम पर जगह बनाई। नाइजीरिया के रिलवान इद्रीस ने स्वर्ण पदक जीता जबकि इंग्लैंड के मैथ्यू हार्डिंग ने रजत पदक हासिल किया। मौजूदा चैंपियन भारत के सुधीर 114.1 अंकों के साथ छठे स्थान पर रहे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। The Union Cabinet approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashwani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. Meanwhile, in a major bid to bring out serious examination reforms, the National Testing Agency has terminated 47 officials from service. According to sources, legal and criminal actions will also be taken against some of these officials. The NTA also issued advertisements for a set of senior professional appointments at the level of general manager and engagement of 16 young professionals through the Pratibha Setu portal of the Union Public Service Commission. NTA, in a statement, said that these measures is being implemented in line with the recommendations of the High-Level Committee of Experts chaired by Professor K. Radhakrishnan. Union Ministers J.P. Nadda and Dr. Jitendra Singh met the CJP delegation in New Delhi. Talking to media after the meeting, Mr. Nadda said they gave a patient hearing to the demands of the CJP regarding reforms in the examination system. Mr. Nadda said that the CJP had put forth three main demands and also suggested some reforms to curb examination paper leak. Mr. Nadda added that the government will hold another round of discussion with the delegation today. Both the Houses of Parliament were adjourned till Monday following ruckus for the fifth consecutive day over the issues of NEET paper leak and student protest. Despite repeated assurance from the government side that it is ready to discuss issues related to NEET paper leak case, the opposition continued its protest, demanding the resignation of Union Education Minister. The Cabinet Committee on Economic Affairs has approved the third and fourth rail line of Ballari-Guntakal section in Karnataka and Andhra Pradesh with a total cost of 1,264 crore rupees. Briefing media in New Delhi,

एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। समय हो गया है प्रोग्राम अरुणिमा का। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। ये वादा रहा फिल्म के गीत के साथ। गीत को अपनी आवाज से सजाया है किशोर कुमार और आशा भोसले ने। गीतकार गुलशन बावरा, संगीतकार RD बर्मन।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म भाई भाई से गीता दत्त की आवाज में, गीतकार राजेंद्र कृष्णन और संगीतकार मदन मोहन।

अभी आपने गीत सुना फिल्म लम्हे से लता मंगेशकर और इलारून की आवाज में, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार शिवहरी।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर. प्रोग्राम है अरुणिमा और आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को, सुनते हैं अगला गीत फिल्म मौसम से भूपेंद्र और लता मंगेशकर की आवाज़ में. संगीतकार मदन मोहन, गीतकार गुलजार.

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

अभी आपने गीत सुना याराना से किशोर कुमार की आवाज में, गीतकार अनजान, संगीतकार राजेश रोशन। आगे बढ़ते हैं, अगला गीत सुनते हैं फिल्म सितमगर से आशा भोसले किशोर कुमार की आवाज में, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार आर डी बर्मन।

आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म हम दोनों से आशा भोसले किशोर कुमार की आवाज में, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार आरटी बर्मन।

ईद के साथ 5:10 पर फिर से हाजिर होंगी लेकर प्रोग्राम भोर सुहानी। गीत है फिल्म जख्मी दिल से उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। तो मैं लेती हूँ अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की गई है। एनटीए ने एक बयान में बताया कि ये उपाय एजेंसी के संस्थागत पुनर्निर्माण की दिशा में पहला ठोस कदम है। एजेंसी ने संविदा आधार पर महाप्रबंधक के 4 पदों के लिए अधिसूचना जारी की है। प्रत्येक की प्रारंभिक अवधि 3 वर्ष की होगी। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी 2 मांगों पर अपनी सहमति दे दी है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंगटकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1,264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ गया है। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल लगातार नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दिल्ली यातायात पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत लागू निषेधाज्ञा के मद्देनजर नागरिकों को अधिसूचित क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। यातायात पुलिस ने बताया कि आपातकालीन सेवाएं निर्धारित अनुमति के अनुसार संचालित होती रहेंगी। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि 18 जुलाई को काला सागर में रूसी जल क्षेत्र में वाणिज्यिक पोत MV ओमोरफी पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई। घटना के समय पोत पर 3 भारतीय नागरिक सहित चालक दल के 10 सदस्य सवार थे। FIH युवा हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में भारतीय जूनियर श्रेणी के बालकों ने पाकिस्तान को 7-3 से और मेजबान ओमान को 10-1 से मात दी। वहीं भारतीय जूनियर श्रेणी की बालिकाओं को चीन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के झंडू कुमार ने पुरुषों के हैवीवेट पैरा पावरलिफ्टिंग में कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। इस प्रतियोगिता में देश का ये पहला पदक है। झंडू कुमार ने 181 और 190 किलोग्राम का भार उठाकर सफलतापूर्वक ये पोडियम पे स्थान बनाया। नाइजीरिया के रिलुवान इद्रीस ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि इंग्लैंड के मैथ्यू हार्डिंग ने रजत पदक अपने नाम किया। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 T20 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। भारतीय टीम ने पहले मैच में जीत दर्ज करके श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और झारखंड के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. The Union Cabinet approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashvani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. Meanwhile, in a major bid to bring out serious examination reforms, the National Testing Agency has terminated 47 officials from service. According to sources, legal and criminal actions will also be taken against some of these officials. The NTA also issued advertisements for a set of senior professional appointments at the level of general manager and engagement of 16 young professionals through the Pratibha Setu portal of the Union Public Service Commission. NTA in a statement said that these measures are being implemented in line with the recommendations of the high-level committee of experts chaired by Professor K. Radhakrishnan. Union Ministers J.P. Nadda and Dr. Jitendra Singh met the CJP delegation in New Delhi. Talking to media after the meeting, Mr. Nadda said they gave a patient hearing to the demands of the CJP regarding reforms in the examination system. Mr. Nadda said that the CJP had put forth three main demands and also suggested some reforms to curb examination paper leak. Mr. Nadda added that the government will hold another round of discussion with the delegation today. Both the Houses of Parliament were adjourned till Monday following ruckus for the fifth consecutive day over the issues of NEET paper leak and student protest. Despite repeated assurance from the government side that it is ready to discuss issues related to NEET paper leak case, the opposition continued its protest demanding the resignation of Union Education Minister. The Cabinet Committee on Economic Affairs has approved the third and fourth rail line of Ballari-Guntakal section in Karnataka and Andhra Pradesh with a total cost of 1,264 crore rupees. Briefing media in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said it will improve connectivity between Andhra Pradesh and Karnataka.
3: Approval hua hai Guntakal se Ballari third and fourth line.
4: Approval has been granted for the construction of the third and fourth railway lines between Guntakal and Ballari. Further ahead, the detailed project report for the third and fourth railway lines between Hospet and Hubli is already under preparation. This will create a complete economic corridor in North Karnataka, connecting both Karnataka and Andhra Pradesh. The project is scheduled to be completed within 3 years.
3: Aur 3 saal ka ye project ka duration hai.
2: He also informed about cabinet's approval for

एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। समय हो गया है 5:11 और 7 सेकेंड। समय है प्रोग्राम भोर सुहानी का। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की सुर संगम के इस भजन के साथ।

जिस तरह मधुबन बिना किसी भेदभाव के अपनी खुशबू बांटता है, उसी तरह हमारा जीवन भी प्रेम, दया और सद्भाव की सुगंध से महकना चाहिए।